एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संबत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 मई सन 2026, प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातः कालीन सभा।

0: एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज़
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एपमेंट 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। वंदना कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अक्षय उदक और साथियों के स्वर में मातृ वंदना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम की शुरुआत में अभी आप सुन रहे थे मातृ वंदना गीत। आइए अब सुनते हैं विपिन सचदेवा और हरिहरन के स्वर में ये भक्ति गीत, जिसमें भक्त महाबली राम भक्त हनुमान से कामना करता है कि हे प्रभु, जितना अतुलित बल आपने पाया, जितनी भक्ति अपने इष्ट के प्रति आपने दिखाई, इस विश्व में अन्य कोई उससे तुलना नहीं पा सकता। इसलिए हे हनुमान जी, मैं आपकी आराधना करता हूँ। सुनते हैं महाबली हनुमान की भक्ति का ये भक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना विपिन सचदेवा और हरिहरन के स्वर में इस भक्ति गीत को। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही भक्ति गीत जिसमें भगवान से भक्त कामना करता है कि हे प्रभु, जो मैं कहाँ हूँ और सो तो न मिटे और झार, मेरी तो सौ बनी यातें करूं पुकार। हे प्रभु, मेरी तो सिर्फ आपसे बनी है और यही वजह है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ दुनिया की सारी झंझटों को छोड़कर। और इस भावना के साथ जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो क्षण में उसकी सारी विपदाओं का शमन हो जाता है। सुनते हैं विपिन सचदेवा और साथियों के स्वर में इस भक्ति गीत को।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे भगवान राम की भक्ति करता हुआ राम भक्त महाबली हनुमान जी की भक्ति का ये भक्ति गीत। आइए आप सुनते हैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति जिन्हें

0: वंदना। और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने भजन गायक हरिओम शरण की भक्ति का ये भक्ति गीत। एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं, समय हुआ है चिंतन का। चिंतन में आज आप सुनिए कर्म ही पूजा, इस विषय पर चिंतन आलेख सुशील कश्यप का है। आइए सुनते हैं कर्म ही चिंतन, कर्म ही पूजा पर यह चिंतन।
1: कर्म ही मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। वह स्थिर दिखता होता हुआ भी सतत और सतत अस्थिर रहता है। कर्म ही पूजा है, इसका अर्थ बहुत सरल है, लेकिन हम कर्म को पहले समझ तो लें। जीवन की शाम होने के पहले अगर कर्म समझ में आ गया, तब ही हम यथार्थ में कर्मशील हैं। लेकिन कर्म और कर्म की गति को समझे बगैर यदि हम कर्म अकर्म को परिभाषित करने में ही लगे रहे, तो निश्चित मानिए हमारा जीवन एक यंत्र हो जाएगा, जो बिजली से चलता है, बिजली से रुकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आखिर कर्म को पूजा माना ही क्यों, और किसने मनुष्य के मस्तिष्क की विराटता को नापा है? क्यों उसे अपने शरीर में बैठे ईश्वर को देखने समझने की चाहत हुई? क्यों जीवन के रहस्य को समझने का पागलपन उस पर सवार हुआ? और क्यों वह मृत्यु के पार की दुनिया को देखने समझने के लिए लालायित हुआ? हम पूजा उसकी ही तो करेंगे जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है। हमारा कर्म ही पूज्य हो जाए, हमारी सांस ही साधना हो जाए, इस बात को हमें कौन समझाएगा? और क्या हम समझ पाएंगे? हम दार्शनिक धरातल पर ये बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य और प्रायोगिक दृष्टि से देखें तो क्या हम जो कर रहे हैं वे कर्म पूजा के योग्य हैं? हम पूजा की श्रेणी में कौन से कर्म को रखेंगे? आप ये समझने की भूल ना करें कि आप जो काम सच्ची मेहनत और लगन से कर रहे हैं, उसे आप अपना कर्म मान बैठे हैं, और बड़ी होशियारी से आप अपनी पूजा से उसे जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जिस मूर्ति, जिस चित्र पर आपकी आस्था है, वह पूजा करने का संतोष देती है, और आपको लगता है कि आज आपने पूजा का नित्य कर्म कर लिया। विश्व में जिन लोगों को भी कर्म समझ में आया, वह सबसे पहले कर्म से मुक्त होने में लग गए। बात कुछ विचित्र लगेगी, लेकिन यथार्थ यही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें कर्म भी पता है और कर्म की गति भी पता है। आप जो भी करेंगे उसका परिणाम निश्चित है, लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, तब परिणाम कैसा? ये न करने की स्थिति ही सबसे कठिन है, क्योंकि कल्पना का वेग सबसे शक्तिशाली वेग है। हम कल्पना से ही कर्मशील रहते हैं, तो कर्म पूजा ही करेगा ये सोचना कठिन है। मनुष्य व्यस्त होने के लिए ही कर्म करता है, क्योंकि रिक्तता, अकर्मण्यता और स्थिरता से वह डरता है। शांत चित्त बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर से तो शांत हो सकता है, लेकिन उसके भीतर कितनी उथल पुथल मची है ये कोई नहीं जान सकता। हम कर्म करने से डरे नहीं, लेकिन बुद्धि विवेक से उसके परिणाम को अवश्य समझ लें। हमारा स्वय हमारे चिंतन से यदि मेल खा गया, तो यकीन मानिए आपके कर्म यथार्थ में पूजनीय होंगे, और आप कर्म के माध्यम से हर पल पूजा ही कर रहे होंगे। बल्कि सामान्य भाषा में कहें तो हम अपनी औकात में रहेंगे। औकात को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है, और औकात को याद रखना ही सबसे बड़ा कर्म और पूजा है। हम याद रखें, जैसा बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। दुनिया में सुखी कौन, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। सुख का कर्म से सीधा संबंध है, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हम कर्म करें, अवश्य करें, लेकिन क्या करें, कब, कैसे?

0: और कहां करें, सोचें फिर करें, तब देखिए प्रत्येक कर्म पूजा हो जाएगा और आपका जीवन मंदिर बन जाएगा। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता।
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे चिंतन में, कर्म ही पूजा विषय पर चिंतन, आलेख सुशील कश्यप का था। एफएमएंड 100.2 MHz पर ही आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह की 6:35 हुए हैं। समय हुआ है श्री रामचरितमानस की गायन पाठ का। आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में श्री रामचरितमानस का गायन पाठ।

संत असंत लक्षण की व्याख्या करते हुए श्री राम भरत से कहते हैं, संतों के मन में कोई कामना नहीं होती, उनका हृदय शांति, वैराग्य, विनय और सरलता का आगार होता है। उनमें सबके लिए प्रीति भाव और धर्म के लिए प्रेरक शक्ति होती है। वे कभी इंद्रियों के निग्रह, नियम तथा नीति के मार्ग से विचलित नहीं होते। संतों के विपरीत असंतों के हृदय में सदा संताप का निवास होता है। उन्हें दूसरों की सुख समृद्धि से ईर्ष्या होती है, पर निंदा में उन्हें अपार सुख मिलता है। काम, क्रोध, लोभ तथा मोह उनके विशेष लक्षण होते हैं। उनका तन और मन निर्दयता, कपट, कुटिलता और पाप के घर होते हैं। जो उनकी भलाई करता है वे उसे भी क्षति पहुंचाते हैं। अतः भूलकर भी उनकी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। झूठ ही उनका लेना देना, भोजन, ओढ़ना और बिछोना होता है। माता पिता, गुरुजन तथा पूजनीय व्यक्तियों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं होता। हे भाई, इसी कारण मैं असंतों के लिए काल रूप हूं और उनके कार्यकलाप का उचित फलाफल देता हूं।

0: श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ सुरेश वाडकर के स्वर में। एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। समय हुआ है कृषि सामयिकी का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव से।
1: खरीफ फसलों का होगा और खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन के लिए अच्छा प्रबंधन उपाय अभी से करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित उर्वरक उपयोग। संतुलित उर्वरक उपयोग से आशय है किसान भाइयों, जो अनुशंसित मात्रा में है, जिस फसल के लिए जितनी खुराक है वह मृदा परीक्षण के आधार पर दी जाए और एक समन्वित प्रणाली होती है उसके माध्यम से पूर्ति की जाए। यहाँ किसान भाइयों ये बताना भी जरूरी है कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली फसल उत्पादन के लिए जो मुख्य कारक होते हैं, उसमें सबसे पहले गोबर की खाद आता है, जिसको हम जीवांश खाद कहते हैं। गोबर की खाद हम नाडेप के माध्यम से दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। आजकल प्राकृतिक खेती का दौर चल रहा है तो घन जीवामृत के माध्यम से देते हैं। तो ये सारी फसलें के लिए जो आवश्यक होती हैं, सारे पोषक तत्व देती हैं, इसको फसल की बुवाई से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय दी जाता है। लेकिन अभी आवश्यकता है ऐसी खादों का, आप सही तरह से उनको बना लें और ताकि वो आने वाले समय में आपको उपयोगी हो सके। दूसरा आता है हरी खाद। हरी खाद भी एक ऐसी खाद है जो जीवांश पदार्थ की मात्रा बहुत तेजी से जमीन में बनाती है और बढ़ाती है। आने वाले समय में कभी कभी वर्षा हो जाती है, आप देखते हैं, तो हरी खाद में जो सन है, ढेंचा है या उड़द मूंग है, इसका भी बीज आप फसल में डाल सकते हैं। तो खेत में डालेंगे तो 25-30 दिन की जब ये हरी खाद की फसल हो जाती है तो खेत में इसकी पलटाई कर दें। खेत में जब पलटाई कर देते हैं तो ये 25 से लेके 80 किलोग्राम तक प्रति हेक्टर नाइट्रोजन फिक्स करती है। और ये जैसे हमारी धान की फसल लगाएंगे या जो भी फसल लगाएंगे उसमें प्रतिपूर्ति नाइट्रोजन की करने में बहुत सहायक होती है और मिट्टी की भौतिक दशा में बहुत अच्छा सुधार लाती है। तीसरी बात आती है किसान भाइयों, जब हमने ये दो उपाय कर लिए, जीवांश खाद दी, हरी खाद दी, अब आता है कि हमको जैव उर्वरक जो हमारे ऐसे हैं, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो या हमारी जो फफूंद है, जो मित्र हैं, लाभकारी हैं, जिसमें एजोटोबैक्टर है, एजोस्पोरिलियम है, ये अनाज वाली फसलों के लिए उपयोगी है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो धान के लिए उपयोगी है, और साथ ही राइजोबियम है या फास्फोरस गोलक जीवाणु है, इसके टीके भी लगाए जाते हैं। तो ये बातें हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम बीजोपचार करते हैं, तो उस खेत में हमको जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए या खेत की जुताई के समय भी किसान भाइयों हम ऐसे उर्वरकों का कुछ मात्रा में मिट्टी में मिला के बुरकाव कर सकते हैं ताकि जैव उर्वरकों की पूर्ति, जो वहाँ का माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो बढ़ सके। फिर आती है कि रासायनिक उर्वरकों को हम देना है। जब हम ये सारा समन्वित करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता हमारी 50% तक कम की जा सकती है और वो 50% से हमारी फसल की उत्पादन की लागत भी कम होगी। तो हम रासायनिक उर्वरक जब देते हैं, चाहे अनाज वाली फसल हो या दाल वाली फसल, अनाज वाली फसलों में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की 2 भागों में या 3 भागों में मात्रा दी जाती है। खासतौर से खरीफ में अब धान की जब बोनी की जाती है तो नाइट्रोजन को 2 या 3 भागों में स्प्लिट डोज में दी जाता है। लेकिन जब मूंगफली है, सोयाबीन है, उड़द है या जो ऐसी फसलें दलहन परिवार से तालमेल रखती है, उनके लिए हम एक ही बार में देते हैं, तो उसमें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की ये प्रणाली अपनाते हैं तो बहुत कम मात्रा में रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है और रासायनिक उर्वरक महंगे भी होते हैं, पर्यावरण के लिए अति ज़्यादा देने से नुकसान भी होता है, जमीन का भी दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। तो संतुलित मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में देने की उपाय करना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। अब किसान भाइयों बात आती है, जो हम फसल लगाने जा रहे हैं, यदि हम दलहनी परिवार की लगा रहे हैं तो हम उसके लिए दलहनी परिवार के लिए जो राइजोबियम है या जो एजिटोबैक्टर है अनाज वाली फसलों के लिए, उसको अभी से व्यवस्था करें और उसको छाया में रखें, कभी भी इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। और जब हम जैसे जो खाद बनाते हैं

0: उसको भी खुली मात्रा में ना छोड़ें और उसको छाया में रखें। जब बीजोपचार करेंगे तो बीजोपचार की प्रक्रिया में राइजोबियम का उपयोग करें, फिर उसके बाद आप फफूंदनाशक से उपचार करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आने वाले खरीफ में आप समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग कर सकते हैं, अपनी फसलों की लागत कम कर सकते हैं, पर्यावरण को और मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं।
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी में खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग, इस विषय पर यह उपयोगी जानकारी दे रहे थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव। एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा हमारी आज प्रसारित होने वाली सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:05 का समय रहेगा लघु वार्ता का। आज विषय रहेगा वसुंधरा अर्थात पर्यावरण। प्रादेशिक समाचार 7:10 पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 का समय रहेगा फिल्म संगीत कार्यक्रम का। 7:45 पर आप सुनेंगे हमारा प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। 8 समाचार प्रभात दिल्ली से रिले होगा। 8:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 9 कार्यक्रम लोकरंग में आज कलाकार होंगी मंजू शर्मा और नीलम वर्मा। इन दोनों लोक कलाकारों के गाए लोकगीतों को आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोकरंग में। 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश होगा। जिले की चिट्ठी का प्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10 करेंगे। 10:05 पर कार्यक्रम सुगम संगीत होगा और इसमें आज कलाकार होंगे हरिहरन। 11 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, दोपहर 12:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम होगा जो इंदौर केंद्र की प्रस्तुति रहेगा, इसे भी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। लोक संगीत 1:30 पर और 1:45 पर सुगम संगीत, ये दोनों कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। युवा श्रोताओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे सायंकाल 5 बजे, और आज की यह प्रस्तुति इंदौर केंद्र की रहेगी जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम 5:55 से भोपाल से रिले होंगे। 7:21 पर चौपाल होगा। 7:30 पर आप किसान वाणी में सुनेंगे किसानों के साथ स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। ग्राम असुआ खेड़ी विकास खंड और जिला शिवपुरी की स्थल रिकॉर्डिंग, प्रस्तुति सहयोग मोहन सिंह यादव का रहेगा जबकि प्रस्तुतकर्ता विनोद कुमार त्रिपाठी रहेंगे। 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामी 1 वर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां 6-दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय 5 देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17-2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में

0: 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 100.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। समय हुआ है लघु वार्ता का। लघु वार्ता में आज आप सुनिए पर्यावरण संरक्षित लघु वार्ता वसुंधरा पर। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दीजिए दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस शक्ति का भगवान रे। श्रोताओ, ये पंक्तियां बताती हैं कि पर्यावरण हमारी वसुधा, ये वसुंधरा हमें कितना कुछ देती है। क्या हम उसका ऋण सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी चुका सकते हैं? कदापि नहीं। क्या हम लगातार प्रकृति को, पर्यावरण को असंतुलित बनाने का प्रयास कर रहे हैं? हां। क्या इस तरह की गलत गतिविधियों को रोककर हम पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? हां। श्रोताओं, जब हम सब ये जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, फिर भी क्या हम तदनुरूप आचरण करते हैं? नहीं। बस यही हमें सुधार करना है। पर्यावरण को सहेजने की जितनी बेहतर पहल हम करेंगे, प्रकृति, पर्यावरण, ये वसुधा उससे कई गुना लौटाकर हमें देगी। और इसका सबसे बेहतर, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी, उसे एक सुखद वातावरण मिलेगा, उसे एक भरपूर ऑक्सीजन और पर्यावरण से समृद्ध देश मिलेगा। और यदि हमने इन लापरवाहियों को करते रहे, पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंचाते रहे, पेड़ पौधे लगाने की बजाय हम काटते रहे, और भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए हम फैक्ट्री मकान बनाते रहे, तो सोचिएगा वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति के विनाश की लीलाएं हमें देखने को मिलेंगी। प्राकृतिक अपरदन, भूकंप का आना, चक्रवातों का आना, भूस्खलन होना, तूफानों का निर्मित होना, सूखा पड़ना, ये सब प्रकृति पर निर्भर है। और प्रकृति के ये वे विद्रूप रूप हैं जिनको यदि प्रकृति ने दिखा दिया तो सारी सृष्टि पर तहस नहस हो जाता है। कई सारे उदाहरण इसके जीवंत हम देख चुके हैं। बावजूद इसके क्या हम सबक ले रहे हैं? नहीं। यदि हम सबक लेना चाहते हैं और अपनी भावी पीढ़ी को एक सुखद भविष्य देना चाहते हैं तो पर्यावरण को सहेजने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी चेतनाएं यदि हम प्रारंभ से ही करना प्रारंभ कर दें, कुछ सुखद अवसरों पर प्रारंभ कर दें, साल में एक बार, दो बार या तीन बार हम पौधारोपण के साथ उन्हें सहेजने की प्रक्रिया आरंभ कर दें तो ये हमारे लिए भी बेहतर है, पर्यावरण सहेजने के लिए भी बेहतर है, और नई पीढ़ी के लिए तो और भी बेहतर है। तो आइए संकल्प लें कि घर में किसी का जन्मदिन है, घर में किसी का स्मृति दिवस है, घर में

किसी के याद का पवित्र दिन है तो हम उन दिनों की यादों को पौधारोपण से संजोएंगे और पौधा रोपकर प्रकृति का भी संरक्षण करेंगे, पर्यावरण के प्रति भी हम जिम्मेदारी निभाएंगे और समाज में जागरूकता भी लाने का प्रयास करेंगे। श्रोताओ, आप सुन रहे थे वसुंधरा अर्थात पर्यावरण संरक्षण पर लघु वार्ता। सुबह के 7:10 होने को प्रादेशिक समाचार भोपाल।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
0: भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरी मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सिचुएशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर ID बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर ID के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक ID प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया U18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई है।

राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई ऑफिस, आधार निर्माण, ई केवाईसी, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। समय हुआ है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं धरती कहे पुकार के, इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म अनोखा रिश्ता का ये गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का लिखा और संगीत राहुल देव वर्मन का है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और लीजिए सुनिए अपना बना लो। जी हाँ, इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की लिखी ये रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म अपना बना लो का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए 20 साल बाद फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, गीत आनंद बख्शी का और धुन लक्ष्मीकांत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं और समय हुआ है हमारे प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का।

नमस्कार शिवपुरी सुनने वाले सभी रेडियो श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र संजीव बांझल का नमस्कार। मित्रों, हम जनगणना के दौर में चल रहे हैं और जनगणना कितनी महत्वपूर्ण होती है इसका हम आकलन करें तो पाएंगे कि चाहे प्रदेश सरकारें हों और चाहे केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र के माध्यम से जो लोगों के हित की योजनाएं बनती हैं वो सारी की सारी योजनाएं जनगणना के आधार पर ही बनती हैं। देश में कितने मकान हैं, कितने लोग हैं, कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोगों को खाद्यान्न की जरूरत है, कितने लोगों को मकान आवास की जरूरत है, कितने लोगों को किन किन सुविधाओं की जरूरत है, इन सब का आकलन यदि किसी चीज से किया जाता है जनगणना से किया जाता है। और जनगणना के तहत जिले में भी ये काम प्रारंभ हो चुका है और 1 मई से लगातार अब तक जनगणना के लिए लोग चुन रहे हैं कि कैसे वह प्रगणक और सुपरवाइजर मौके पर पहुंचकर एक एक मकान की गणना कर रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि पहले हाउस होल्ड गिने जाएंगे और फिर जनगणना की पूरी जानकारी होगी। इस दौरान जब प्रगणक आपके घर आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह बताएं कि जो जानकारी पूछी जा रही है वह जानकारी हम सही भरें। जो 33 सवाल इस दौरान पूछे जा रहे हैं उस पर भी हमारी जानकारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। आवश्यकता इसी बात की है कि हम थोड़े से जागरूक हों और जिन लोगों को अब तक इस विषय में कोई जानकारी नहीं है उनकी जागरूक करने के लिए अब एक नई पहल भी जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जिसके तहत हमारी जनगणना हमारा विकास रूपी जनगणना जागरूकता रथ को सोमवार को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर अपर कलेक्टर श्रीमान दिनेश चंद्र शुक्ला जी ने इसे रवाना किया। इस जनजागरण रथ का उद्देश्य यही है कि भारत सरकार के माध्यम से जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत 1 मई से 30 मई तक जो प्रदेश भर में मकानों की जनगणना का कार्य जारी है उस बारे में लोग जागरूक हों। जब प्रगणक घर घर पहुंचे तो नागरिक उन्हें मकान की स्थिति, मूलभूत सुविधा और परिवार से जुड़ी सटीक जानकारी निडर होकर दें। अपर कलेक्टर श्री दिनेश कुमार शुक्ला ने अपील भी की है कि प्रगणकों को एक कार्य में सहयोग करें और इस अभियान को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा माने और हर नागरिक का दायित्व है कि वो इसमें सहयोग करें और यदि किसी को कोई सहायता चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो इस संबंध में जो हेल्पलाइन नंबर है 1855 इस पर संपर्क किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थी बात हुई हमारी जनगणना की और जागरूकता रथ की। अब हम आपसे बात कर लेते हैं कुछ खेल से जुड़ी हुई खबरों की, जिसमें 15 मई से जो ग्रीष्मकालीन खेल की शुरुआत हो रही है उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को एक नया अवसर मिलेगा और इन खेल प्रतिभाओं को नया अवसर मिलने के साथ साथ खोजा जाएगा कि किन किन खेलों में किन खिलाड़ियों की रुचि है, वो चाहे ग्रामीण स्तर के हों चाहे शहरी स्तर के। कैंपों के माध्यम से इसकी पड़ताल होगी और फिर उन्हें जिले स्तर के खेल परिसर में अवसर मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो इसकी भी शुरुआत हो गई है और 15 मई से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कैंप लगेंगे।
श्रोताओं, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी अपील की जो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और वो अपील 7 सूत्रीय है। और उन 7 सूत्रीय अपील के माध्यम से उन्होंने देशवासियों से कहा है कि जो पश्चिम एशिया संघर्ष चल रहा है उसमें हम सबको संसाधनों को बचाने की आवश्यकता है और इस वैश्विक संकट से हम उबर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उबरेंगे नहीं, लेकिन उस वैश्विक संकट के चलते यदि देश के लोग थोड़ी जागरूकता दिखाएं, थोड़ा चेतना ले आएं, थोड़े से जागरूकता के माध्यम से समाज में परिवर्तन ले आएं, तो निश्चित रूप से मानिएगा हम भविष्य के लिए भी बेहतर बन पाएंगे और अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अपनी जागरूकता का भी परिचय देंगे। तो पहली उन्होंने जो अपील की है पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल उतना ही उपयोग करें जितनी आवश्यकता है, हम व्यर्थ पेट्रोल डीजल का उपयोग ना करें, क्योंकि न केवल इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, हमारी वसुंधरा को खतरा उत्पन्न होता है, वरन इस के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन भी अधिक होता है जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और हम अनावश्यक पैसा जरा सी उपयोग के चलते फूंक देते हैं। हम कोशिश करें कि हम पैदल चलें, हम साइकिल का उपयोग करें, हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जिनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षित हो। हम पेट्रोल डीजल की बचत करने के साथ साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कार का काम करें, कार को फुल लेकर के ही जाएं। अर्थात मान लीजिए कार में ड्राइवर के अलावा 4 की क्षमता है, ड्राइवर के अलावा कार में बैठने वाले लोगों की 6 की क्षमता है या 9 की क्षमता है, तो हम कार को फुल लेकर के ही आगे जाएं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो पर्यावरण हमारा दूषित होने से बचेगा, दूसरा हम पर देश पर जो आर्थिक बोझ आता है अनावश्यक पेट्रोल और डीजल के खर्च करने से वो बचेगा, तीसरा जो सामान्य रूप से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखते हैं और अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से रखते हैं, तो सोचिएगा कितना सारा फ्यूल, कितना सारा पेट्रोल डीजल खर्च होगा। और यदि हम एक ही गाड़ी का उपयोग करके 5 लोग हैं तो छोटी कार में भी जा सकते हैं, हम 8 लोग हैं, 9 लोग हैं तो हम बड़ी कार में जा सकते हैं, अलग अलग 2 कारों को ले जाने की बजाय हम एक कार का उपयोग करें। यदि हमारे शहर में या आसपास कहीं मेट्रो की सुविधा है तो हम उसका उपयोग करें। हमें सामान लाने ले जाने के लिए भी भारी वाहनों की तुलना में हम ट्रेन का उपयोग करें, क्योंकि ये वो संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम इनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम की नसीहत भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, जिसके माध्यम से निजी और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ शासकीय सेक्टरों में भी हम इन कोर्सेज को ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से अभी पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हम जो सुविधाएं विद्यार्थियों को लोगों को दे सकते हैं वो दें, ताकि आने जाने में संसाधनों पर कम खर्च हो। हम सोने की खरीदी से बचें, ये वर्तमान का जो दौर है ये दौर बहुत ही संसाधनों को बचाने का है और वैश्विक संकट का है, इसलिए हम बड़े जो हमारे घरों में उत्सव आते हैं उस दौरान हम कोशिश करें कि हम सोने की खरीदी ना करें और इससे भी काम चल जाए तो बेहतर है। हम स्वदेशी अपना उत्पादों को अपनाएं, फिर जो विदेश यात्राएं उनसे भी बचें और वोकल फॉर लोकल करने का प्रयास करें। ये वो 7 सूत्र हैं जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको देशवासियों को दिए हैं, और इनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए देश को बचा सकेंगे। सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें पर्यावरण, प्रकृति और अपनी संस्कृति से जोड़ता है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

0: श्वेता प्रकृति को, पर्यावरण को, पर्यटन क्षेत्रों को, खूबसूरती को हम बचा कर तभी रख सकते हैं जब हम पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएं। तो हम संकल्प लें कि हम पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि हम पैदल चल सकते हैं, हम यदि साइकिलिंग का उपयोग कर सकते हैं, तो फिर हम पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाने से बचा सकेंगे और अपने जो खूबसूरत क्षेत्र हैं, जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, उनकी सैर करके हम लोगों को संदेश भी दे सकेंगे। तो इस सूचना के साथ बढ़ते हैं एक और सूचना की ओर। आज से योग के विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रहे हैं। शिवपुरी में भी योग की जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन है, जिसके माध्यम से लोगों को योग से जोड़ा जाएगा और सिखाया जाएगा कि यदि वह प्रतिदिन योग करते हैं तो निश्चित रूप से वह खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बिजली कटौती की सूचना आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहती है, उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो जवाहर कॉलोनी फीडर से, इमामबाड़ा फीडर से 12 मई को यानी आज सुबह 6 से 11 बजे तक बिजली कटौती रहेगी, जिसके चलते लोग इससे प्रभावित रहेंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कुछ सूचनाओं के साथ, कुछ मनोरंजक जानकारियों के साथ और कुछ उपयोगी जानकारियों के साथ नमस्कार शिवपुरी की कुछ साझा सूचनाएं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का

0: उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेओक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
10: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
12: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
13: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे ये संदेश, लीजिए सुनिए अब ये संदेश।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: विकसित भारत की
5: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए फिल्म बंधन कच्चे धागों का। इस फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, अनजान के लिखी ये रचना, हेमंत भोंसले का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है मंजू वर्मा, केदारी वर्मा, भानु वर्मा, यशपाल वर्मा और जेपी वर्मा ने, तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए कारवां फिल्म का ये गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी ये रचना, आरडी वर्मन का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है राघवेंद्र सिंह भदौरिया, संजीव शर्मा, अवनीश श्रीवास्तव और इनके बहुत सारे साथियों ने, सर्किट हाउस रोड शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में आज कलाकार हैं मंजू शर्मा, नीलम वर्मा। सबसे पहले सुनते हैं मंजू शर्मा के गाए लोकगीतों को। आइए उनका सुनते हैं ये देवी लोकगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

श्रोताओं, कार्यक्रम लोकरंग में आज सुन रहे हैं आप लोक कलाकार मंजू शर्मा और नीलम वर्मा को। अभी आप सुन रहे थे मंजू शर्मा के गाए लोकगीतों को, आइए आप सुनते हैं नीलम वर्मा के गाए लोकगीतों को। सबसे पहले सुनते हैं उनका गाया ये सौहर लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोतो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में आज आप सुन रहे हैं मंजू शर्मा और नीलम वर्मा के गाए लोकगीतों को। अभी आप सुन रहे हैं नीलम वर्मा को, लीजिए उनका गाया, सुनिए ये लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग में लोक कलाकार मंजू शर्मा और नीलम वर्मा के गाए लोकगीतों को। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत के आपकी फरमाइश का। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म दामिनी का ये नगमा, कुमार शानू, अलका याग्निक, समीर और नदीम। अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर की लिखी रचना और नदीम श्रवण का संगीत। की सुनने की फरमाइश भेजी है आशुतोष शर्मा, भानु शर्मा, सुगंधा शर्मा, जयदीप शर्मा और पुण्या शर्मा ने, सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहे।

फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए गौतम गोविंदा फिल्म का ये गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर मन्ना डे ने, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है सौरभ गौड़, ममता गौड़, आकांक्षा गौड़, निर्मला गौड़, सुप्रिया गौड़ और तलविंदर गौड़ ने न्यू ब्लॉक शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगर मालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगर मालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत

0: प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्री द्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। आगरमालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रूपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रूपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रूपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगरमालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में SDM व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगरमालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन 2 औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगरमालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हडाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे आगरमालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का था और वाचन स्वर शरद बाघेला का।
2: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं हरिहरन। आइए सुनते हैं सबसे पहले उनकी गाई ये गजल।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज कलाकार हैं हरिहरन। लीजिए सुनिए उनकी गाई ये गजल, रचना अनवर वेग की है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कागज कलम नहीं इस बार।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में हरिहरन को। लीजिए सुनिए सईद राई की ये रचना हरिहरन के स्वर में। प्यारी सी गजल जरूर सुनिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में हरिहरन को। आइए सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये गजल, रचना काफिल अजहर की है।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में हरिहरन की गाई गजलों को। एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। समय हुआ है फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आइए सुनते हैं कल आज और कल इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है किशोर कुमार, आशा भोसले, मुकेश ने। गीत नीरज का लिखा है और धुन शंकर जयकिशन की। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है मंटू गुप्ता, भानु गुप्ता, केदारी गुप्ता, नंदनी गुप्ता, यशपाल गुप्ता और ओम गुप्ता ने तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी से। सुनते हैं इस फिल्म का, आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए बीवी हो तो ऐसी, इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और समीर ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है जयपाल जाट, भानु जाट, केदारी जाट, नन्नी जाट और सिमरन जाट ने कोलारस से। इसी गीत को सुनना पसंद किया है राघवेंद्र सिंह भदौरिया, देवेंद्र भदौरिया, पूनम भदौरिया, मनोज भदौरिया, विक्रम भदौरिया, लालू भदौरिया ने, विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे थे बीबी हो तो ऐसी फिल्म का ये गीत। आइए आप सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म का ये नगमा। इसे गाया है किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है जाहिद खान, इरशाद खान, इशरत अली, नावेद अली, अकरम खान और इनके बहुत सारे साथियों ने कल्लन सोप फैक्ट्री के पास शिवपुरी से। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफ एम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए हीरो फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर मनहर उदास की आवाज़ में, आनंद बख्शी की लिखी रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है महल कॉलोनी मंगलम लॉज के पास से आदिश कुमार जैन, अगम जैन, बंटी, बबलू, सुगम, स्वस्ति मेहुल और इनके बहुत सारे साथियों ने। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का फिल्म हीरो का ये गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में, आनंद बख्शी की लिखी रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यही संपन्न होता है। थोड़ी देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रदेश का प्रसारण है, पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।
2: नमस्कार, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमारे हाथों में एक नया दिन रख देती है, लेकिन उसे शिकायतों से भरना है या शुक्रिया की रोशनी से सजाना है, ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारा अपना होता है। कभी हम उन चीजों के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और कभी एक छोटी सी खुशी भी मन को इतने संतोष से भर देती है कि जीवन सुंदर लगने लगता है। सच तो ये है कि सुख केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस दृष्टि में छिपा होता है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। शिकायतें धीरे धीरे मन की मिठास छीन लेती हैं, रिश्तों में अनकही दूरियां भर देती हैं, और फिर घर परिवार दोस्त सबका साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसी जीवन को जब हम शुक्रिया कहकर स्वीकारते हैं, जब हम आभार के भाव से भरते हैं, तो साधारण दिन भी उत्सव जैसा लगने लगता है। सच तो ये है कि जिसे जो मिला उसने उसी से अपना संसार बना लिया, किसी ने कमी गिनी और किसी ने कृपा। तो आइए आज इसी विषय पर कुछ दिल की बातें करते हैं। आज का विषय, शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं? आप अपनी जिंदगी में किन बातों के लिए ईश्वर, समय, अपनों या जीवन को शुक्रिया कहना चाहेंगे? क्या है आपके संतोष का आधार? कौन सी छोटी सी बात, कौन सा रिश्ता, कौन सी याद या कौन सा अनुभव आपको भीतर से संतोष से भर देता है? और क्या आपको लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है? तो आज इस कार्यक्रम में अपने अनुभव, अपने एहसास और अपने मन की बात साझा कीजिए हमसे। नमस्कार, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए।
3: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, ग्राम सिरवा बांधा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
2: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, कैसे हैं?
3: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
2: और बिल्कुल समय का ध्यान रखकर आपने फोन किया है।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: ये बहुत जरूरी है, हमारे सभी श्रोताओं को ये चाहिए कि वो समय का ध्यान रखकर एक हफ्ते के बाद फोन करें। तो योगेश जी,
3: शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे।
2: बहुत अच्छी बात। तो योगेश जी, हम आज का विषय बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आप किसके साथ हैं, शिकायतों के साथ या शुक्रिया के साथ। अक्सर मन में लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, अपने अभावों को, अपनी कमियों को हम बहुत देखते हैं। लेकिन हर जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए इंसान शुक्रिया कह सके। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं और किस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे आप?
3: हमारा जीवन ज़्यादातर शुक्रिया पर ही मतलब अभी तक गुजरा है। अक्सर लोगों को हम शिकायत करते सुनते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलेगी और उस तरह से हमारा मानसिक स्थिति होगा। तो जो चीजें नकारात्मक होती है या जो हमारे से थोड़ी दूर होती है उनके बारे में उतना ना सोचे।
2: बिल्कुल,
3: जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को शुक्रिया में गुजारे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुक्रिया कहने का मतलब तभी आता है कि जब हम या तो सामने वाले का मदद कर दे या सामने वाला हमारा मदद कर दे, तो ये सबसे अच्छी चीजें होती है।
2: बिल्कुल, जो कुछ हमें जिंदगी में नहीं मिला है उसकी शिकायत करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो मिला है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, है ना?
3: बिल्कुल, मानव जीवन जैसे हमें मिला है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। माता पिता है, पूरा परिवार है, इससे बड़ा एक इंसान के लिए कोई सौभाग्य की मतलब बात नहीं हो सकती।
2: बिल्कुल। तो आज हम जानना चाहते हैं योगेश जी कि एक कोई ऐसी बात आप बताएं जिसके लिए आप, या जितनी बातें आप कहना चाहें, किस बात के लिए आप दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं जिंदगी को?
3: जिंदगी को दिल से शुक्रिया तो इसी बात के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा भरा परिवार है और अभी तक के 35 साल के जीवन में हमें कभी मतलब दुखद या फिर कह सकते हैं जिंदगी से उस तरह से कोई शिकायत नहीं है।
2: क्या बात है। देखिए आज जबकि बहुत से इंसान ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हर पल शिकायत होती है और इसकी वजह से उनके घर का पूरा वातावरण भी ख़राब होता है, ज़िंदगी भी ख़राब होती है, कई बार शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां आ घेरती हैं इस नकारात्मक भाव में रहते रहते। लेकिन आप कह रहे हैं
3: जी जी ज़िंदगी से जितना चाहे है उनसे दोगुना ही मिला है।
2: क्या बात है, तो सोचना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसको भी हम सेलिब्रेट करें, है ना। जो कुछ मिला है वो कम नहीं है, बहुत कुछ मिला है और का हम प्रयास कर सकते हैं खुशी के साथ, मेहनत के साथ, लेकिन जो मिला है उसे सेलिब्रेट करना ना भूलें।
3: जी जी जी।
2: तो योगेश जी बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम नमस्कार।
1: जी। नमस्कार दीदी, मैं दादू भाई कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
0: रोशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस
1: जी
0: कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं?
1: जी दीदी, शुक्रिया के साथ रहूंगा मैं
0: अच्छा, तो किन बातों का शुक्रिया कहेंगे?
1: जी। मैं तो भगवान को, मतलब ईश्वर को यही शुक्रिया कहूंगा कि हमें, मतलब, इंसान के रूप में जन्म दिया है। मतलब इंसान का जन्म बहुत यूनिक के बात कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिलता
0: बिल्कुल,
1: है। जी
0: बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना?
1: जी जी
0: तो पहला धन्यवाद तो इसलिए कि मनुष्य के रूप में आपको ईश्वर ने जन्म
1: जी
0: दिया। और
1: जी
0: किन-किन
1: जी जी
0: बातों का संतोष है जीवन में आपको? अक्सर हम
1: और दीदी मुझे सारी बातों का संतोष है, लेकिन एक चीज से मैं कहना चाहूंगा कि मैं, मतलब, पढ़ाई नहीं कर पाया।
0: अफसोस है आपको कि आप पढ़ाई
1: जी,
0: नहीं कर सके,
1: जी जी
0: लेकिन
1: अफसोस भी
0: देखिए।
1: है। जब 2 साल का था तब मुझे माइंड वाला दीदी जी बुखार हो गया था, तो डॉक्टरों ने, मतलब, पढ़ाई के लिए मना किया था कि पढ़ाई न कराना, नहीं आंखों की रोशनी चली जाएगी।
0: अब तो ठीक हैं आप?
1: जी अभी तो दीदी ठीक है, आप, मतलब, पूरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन,
0: हाँ,
1: मतलब, पढ़ाई करने में दिक्कत होती तो पढ़ाई नहीं इसलिए करते दीदी।
0: लेकिन आजकल देखिए पढ़ने के भी बहुत तरीके हैं, सीखने के बहुत
1: जी
0: तरीके हैं, है ना?
1: जी
0: सुनकर
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: कुछ आप सीख सकते हैं, है ना?
1: जी
0: तो
1: जी जी जी
0: आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो सुनकर कीजिए, ऐसे बहुत से
1: जी
0: साधन
1: और
0: हैं।
1: अभी रविवार को हमने मदर्स डे मनाया है, तो मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी माँ को कि हमें, मतलब, जीवन, इतना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने।
0: देखिए, यही एक बात कि माँ साथ है, माँ ने इतनी अच्छी परवरिश दी, इस बात का भी शुक्रिया हो सकता है ना? बिल्कुल होना ही चाहिए।
1: किसी किसी की तो दीदी माँ भी नहीं होती साथ, तो उनको भी बहुत दुख होता है और हमें भी।
0: जी, तो रोशन सिंह जी, कहने का अर्थ यही है कि जीवन जो है वो नजरिए की बात है, वस्तुओं में, उपलब्धियों में, चीजों में सुख नहीं है। आपका नजरिया ही जो है वो आपको सुखी या दुखी करता है, संतुष्ट या
1: सुखी और
0: असंतुष्ट
1: दुखी में
0: करता है।
1: नजरिए का बहुत अंतर है दीदी जी,
0: जी जी
1: पूरा ही, मतलब।
0: तो शिकायतों के साथ नहीं, आप जीवन को शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ें, हमारा यही आज आपसे कहना है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।
1: जी दीदी नमस्कार, मैं सुनीता दीदी बोल रही हूँ, आप नाम जान सकता हूँ
0: जी
1: थोड़ा।
0: जी जी जी सुनीता बोल रही
1: जी
0: हूँ।
1: जी दीदी नमस्कार, मैं आपको
0: नमस्कार,
1: वतन का राग में सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से
1: नमस्ते
0: रेडियो से जुड़े रहिए और
1: जी
0: हमें
1: जी
0: फोन करते रहिए। बहुत
1: जी जी
0: शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के सारण सेवा में आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश जी।
0: संतोष कुमार राव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आज ये जानना चाहते हैं जो विषय है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ सा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हम बहुत सी बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं और शिकायतों से भर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको संतोष देती है? आप शिकायतों के साथ हैं जिंदगी में या शुक्रिया के साथ हैं?
1: जी हमें हर बातों का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ ने जन्म दिया है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेड़ हमें छांव देते हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हवाएं हमें वायु देती है, इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जल हमें नीर देता है, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन को शुक्रिया अदा करते ही अगर जाएंगे तो जीवन में संतुष्टि पाएंगे, और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष का कारण होता है। तो विनम्र बनेंगे तो सहजता ही सरलता का भाव आता है, मन में ख्याल आता है, और विचारों को भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं।
0: क्या बात है। तो दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन बोझ नहीं सुंदर लगने लगता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि कितनी बातों का हम शुक्रिया कह सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर हमारे पास है, माँ ने जन्म दिया, परिवार ने हमें पाला पोसा, इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं, हम चलने के काबिल हैं, बोलने के काबिल हैं, हम सुन सकते हैं, बहुत से उपहार हमें ईश्वर ने दिए हैं, है ना। और आपने प्रकृति की भी बात की है, बहुत अच्छा लगा संतोष जी। और इस तरह की जब एक दृष्टि होती है तो हमारा जीवन जो है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम शिकायतों से नहीं भरते, हम हर बात के लिए आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं और कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं। और जो कृतज्ञ जीवन होता है वो हमेशा आनंदित होता है।
1: जी बिल्कुल मैम। और बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम होता है कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। सभी प्रसारण सेवा के जो कार्यक्रम आते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं, और आपकी प्रस्तुतियाँ बहुत खास होती है। जितने भी पुराने हमारे अनाउंसर रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं। आप सभी की योगदान के लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हैं मैडम, क्योंकि इतनी अमूल्य समय निकाल करके आप हमसे बातें करते हैं और इतने कार्यक्रमों को आप प्रसार करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
0: क्या बात है, आप हमारे प्रसारण के लिए हमें शुक्रिया कह रहे हैं। देखिए ये भी एक बात हो सकती है, एक नया ही दृष्टिकोण आपने दिया। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद
1: जी मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: जी जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी जी, मैं तो आज धन्य हो गया मैम जी कि आप उपस्थित हैं और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि अभी मेरे विचारों की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो तक पहुँचे और श्रोताओं तक पहुँचे।
0: क्या बात है।
1: तो मैम जी, मैं अपना परिचय दे देता हूँ सबसे पहले। नियमित श्रोता जय नरसिंह एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के से कमलेश कहार बोल रहा हूँ जी।
0: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं और बिल्कुल ध्यान से पूरे 7 दिन के बाद फोन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपका हम आभार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: थोड़ी सी मैम बस एक बात और रखनी, जैसे तो मैं सुन लूंगा मैम जी, वो तो सुनना जरूरी है, जैसे के अनुकूल ही बोलूंगा। यही की श्रोताओं से निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम 8 या 9 दिन के पश्चात ही आप फोन लगाएं।
0: क्या बात है। तो कमलेश जी, आपके संदेश से हमारा मन खुश हो गया है, आपका आभार करते हैं कि हमारी तरफ से आपने ये बात कह दी है, बहुत शुक्रिया। आज का विषय जो है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जीवन में आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ, किन बातों का आभार करना चाहेंगे आप?
1: ये भी अनुकूल बात है मैम जी कि हमें शुक्रिया का अपनी जगह करने चाहिए जो हमारे पास है। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास एसी नहीं है तो बहुत से लोग एसी के लिए आतुर हैं आज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो है जितना है, कैसे है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
0: क्या बात है, क्या बात है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बहुत अधिक शिकायत से भरना ये जीवन को खराब कर देता है। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी याद है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपको ऐसी कौन सी बात है जो संतोष से भरती है?
1: देखिए मैम जी, मुझे अपनों का साथ रोजी है, उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अपनापन जो है, मैं रेडियो के माध्यम से अपनापन समझता हूँ, तो रेडियो मेरे साथ है, मैं रेडियो के रोजाना उसके साथ हूँ। और आप जैसे हो सकता हमारे बीच है, तो ये भी एक शुक्रिया का या धन्यवाद का या आभार का, आभार की स्थिति बनती है
0: जी।
1: अपनों का साथ यदि रोजीना आपके साथ है तो इससे बड़ा धन्यवाद या इससे बड़ा आभार किसी के लिए हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास जीवन की बहुत सी उपलब्धियां हो लेकिन कोई अपना ना हो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए, तो सारी खुशियां बेमानी हो जाती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मन की बात कह दी, मैं यही कहने वाला था कि यदि हम उत्साह उमंग या खुशी मनाते हैं और ये अपना साथ ना हो तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें पीस पहुँचती है मन में, हृदय जरूर यह बात खलती है कि अपना कोई होना था तब हम उसके साथ अपनी बात रख पाते या खुशियां मना पाते।
0: जी जी,
1: तो
0: जी,
1: मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा है या रिश्तेदार है या जो भी अपनेपन है, सभी के साथ उत्साह उमंग के साथ रहें और आभार रोज ही ना उनका करते रहें।
0: जी, और कहा जाता है कि जो हर बात के लिए आभार करता जाता है, जीवन में जो कुछ उसको प्राप्त है उसके लिए जो आभार करता जाता है, उसको प्रकृति की ओर से और बहुत कुछ मिलता जाता है। आप जितना संतुष्ट होते जाते हैं उतनी प्राप्ति और होती जाती है, तो इस वजह से भी आपको बहुत संतुष्ट होना चाहिए।
1: जी जी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ रोजीना, मेरा स्वभाव बन चुका है कि धरती माँ को शरण स्पर्श करना, जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता की जय हो, आभार करता हूँ उनका रोजीना, ऐसा नाम लेकर के चंद्र देवता सूर्य भगवान जो हमारी संस्कृति कहती है, उन सभी का आभार करता हूँ कि मुझे आज के लिए आपने तैयार किया, मैं अब रोजी रोटी से लग जाऊँ।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने कमलेश जी कि आप प्रकृति का आभार करते हैं, सूरज चांद धरती आसमान का आभार करते हैं कि एक और नया दिन हमें मिला है जीने के लिए और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ें, इस बात का शुक्रिया करते हैं। क्या बात है, मन खुश हो गया ये बात सुनकर।
1: बहन जी, ये शब्दों तक सीमित नहीं है, मैं सुबह में ही लाया हूँ। जी जी, शायद सुना पड़ी हो, कोयल मेरे बीच में है।
0: जी जी जी, कोयल ने आपके स्वर से स्वर मिलाया है और उसने सहमति दी है कि कमलेश जी सही कह रहे हैं।
1: पेड़ लगे हैं आम के, मैम जी अमियां लगी हैं, आम भी हो गए हैं, आंधी तूफान सबका आनंद ले रहे हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए कमलेश जी, इसी तरह संतोष के साथ जीवन को खुशी खुशी आप बिताइए और आकाशवाणी का साथ बनाकर रखिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। अंततः यह कहूंगा कि पूरी टीम को आभार धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहते हैं, मैं हर बार यही कह देता हूँ क्योंकि उनको आभार करना हमारा दायित्व बनता है, सभी श्रोताओं का दायित्व बनता है जो हमें आवाज के माध्यम सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन उनके माध्यम से आवाज जरूर हमारे तक आ
0: रही है। जी जी जी बिल्कुल, तो हमारी पूरी टीम तक आपका आभार पहुँच रहा है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार, मैं दशरथ सिंह बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर से।
0: दशरथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने हमें फोन किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के विषय पर आप बहुत अच्छा एक कोई विचार रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिंदगी में किन बातों के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं? आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ हैं? आपको क्या लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है या वस्तुओं में, चीजों में छिपा होता है?
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुख का, और शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है। हमारे पास अपना जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी हाथ पैर पांव सब ठीक है, और मम्मी पापा हमारे साथ हैं। शाम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर की चाय हम सब साथ में बैठकर पीते हैं, इससे सुख और क्या हो सकता है।
0: क्या बात है, परिवार का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, भोजन की व्यवस्था है।
1: गरीबी और अमीरी, ये दुनिया का और संसार का नियम भी है, परिवर्तन का नियम है, लेकिन अपने पास स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अपना जो शरीर है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ है, सलामत है, और मम्मी पापा साथ में है, बच्चे बच्चियां हैं, मिसेज हैं, परिवार है, दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, सभी कस्टमर आते हैं, वो सब सब कुछ चल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है दशरथ जी, कि परिवार का साथ है, भोजन की व्यवस्था है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपका जो रोजगार है, रोजी रोटी, उसका काम बढ़िया चलता है, तो ये जरूर है कि आप और अच्छे का प्रयास करते होंगे, लेकिन जो है उसका संतोष जरूर है। जी
1: जी जी, हमने ये बात भी देखी कि वो सारे के पास अथा पैसा है, लेकिन उनके पास बिल्कुल शांति नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है, कोई गरीब आदमी आ गया तो उनको ऐसे ही टाल देते हैं कि इससे क्या बात करेंगे, अपना समय ऐसे ही जाया करा जाएगा, तो एक काम करते हैं, पैसे में लगे रहते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, हम व्यवहार के पीछे भागते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए संतोष का बहुत सा अवसर और बहुत सी चीजें जीवन में उपलब्ध हैं, देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, है ना? हमारे जीवन में ईश्वर ने हमको ऐसा बहुत कुछ दिया है, ऐसी अनेक परिस्थितियां जिसके लिए हम आभार कर सकते हैं, जिसका कि आपने जिक्र भी किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा दशरथ जी कि आपने एक बहुत सुंदर संदेश दिया इस कार्यक्रम के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण निरंतर ऐसे ही दिन रात हम तक पहुँचता रहे, जैसे कि आकाशवाणी को सुनते हुए एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है,
0: जी
1: तो ये मेरे हिसाब से कि जो कस्टमर और सुन रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, जो श्रोता बंधु हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 90 साल का जो हमारा आकाशवाणी का सफर रहा है, हमारे से पहले भी चलता आ रहा था, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझना चाहिए कि आकाशवाणी क्या हो रही
0: है, बिल्कुल
1: क्या होती है।
0: बहुत अच्छी बात, तो आकाशवाणी से ये प्रेम बनाकर रखिए, आपके जरिए ये भी संदेश पहुंच रहा है कि आकाशवाणी, आप जो आने वाली पीढ़ी है वो भी रेडियो से जुड़े। बहुत अच्छा लगा दशरथ जी,
1: और कहते हैं कि जहां ना पहुंचे प्राणी वहां पहुंच गई आकाशवाणी।
0: बहुत अच्छी बात, तो दशरथ जी आपने हमें आज फोन किया, आपका हम आभार करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते खमागणी।
0: नमस्ते खमागणी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: मोहनलाल प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम। और हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक है।
0: गर्मी खतरनाक है ही इस साल, तो बहुत बचकर रहना होगा और पूरी सावधानियां बरत कर ही गर्मी के मौसम में बाहर निकलिएगा। फिलहाल जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम जानना चाह रहे हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको संतोष होता है। बहुत से लोग जीवन में शिकायतों के साथ रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, मेरे जीवन में ये कमी है। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जो है आपकी जिंदगी में, किस बात के लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे जिंदगी को?
1: भगवान की मेहरबानी से एक लड़का है, तो वो मेरी मतलब मुराद पूरी हो गई। और दो बच्चियां हैं, जो एक शादीशुदा है और एक छोटी है, तो मेरी मुराद पूरी हो गई है। और वो एक भगवान की मेहरबानी से एक बच्चा है, तो वो भी अपने काम पर व्यस्त है। तो मतलब मेरे मन की मुराद पूरी हो गई और मैं संतुष्ट हूँ।
0: संतुष्ट हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं आपको ये लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो योग्य हैं और एस्टेब्लिश्ड हैं, इसलिए आप संतोष करते हैं और आभार करना चाहते हैं ईश्वर का? और कौन सी बात है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे? कई बार शिकायतें होती हैं लोगों को बहुत कि जिंदगी में ये नहीं है, अभावों पर बहुत हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो हमारे पास
1: मैं मेरे शरीर से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं नशा करता नहीं हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। भगवान की मेहरबानी से खुद धंधा कर लेता हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान की मेहरबानी से धंधा भी अच्छा है।
0: जी जी, तो आप स्वस्थ हैं इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बड़ी बात है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा गया है स्वास्थ्य को, है ना? तो सबसे बड़ा धन जब आपके पास है, आप स्वस्थ हैं, तो जीवन का सारा आनंद आपके पास है। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है जिंदगी को, है ना? तो मोहनलाल जी, आज आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं अनूपपुर से।
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप, शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ? ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, खुशी है और आप शुक्रिया कहना चाहते हैं?
1: देखो मैम, शुक्रिया जरूर हमें किसी की, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें अच्छा कोई कर रहा है, तो हम जरूर भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी,
0: जिंदगी आपके साथ जो व्यवहार कर रही है, जिंदगी ने आपको जो दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बात जिंदगी से आपको मिली है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल मैम, हमारे जीवन में जरूर ऐसे कई बस ऐसे बातें आए हैं जिसको हम लोगों को शुक्रिया अदा किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जी,
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
0: अच्छा, तो देखिए आपके पास एक नौकरी है, इस बात का शुक्रिया कर सकते हैं आप, है ना?
1: जी,
0: बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है।
1: जी, जी,
0: है ना? इसी तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। घर में, घर परिवार में कौन है आपके?
1: घर परिवार में मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है।
0: और सभी लोग स्वस्थ हैं?
1: जी बिल्कुल,
0: सभी लोग खुश हैं, इस बात का शुक्रिया हो सकता है, है ना?
1: बिल्कुल हो सकता है। और एक शुक्रिया एक अदा है, एक और होता है शुक्रिया, जैसे मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके मेरे को मतलब नौकरी पे रखा, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया अपने
0: बिल्कुल,
1: दोस्त को।
0: बिल्कुल,
1: जी,
0: दोस्त को भी शुक्रिया, ईश्वर को भी शुक्रिया। तो इस तरह से एक नजरिया जब हमारा होता है जिंदगी में कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसको भी हम कभी सेलिब्रेट करें, है ना?
1: जी जी बिल्कुल,
0: अच्छे के लिए हम प्रयास जरूर करें, जो कुछ कम है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। किसकी जिंदगी में कमियां नहीं है, हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी बात की कमी है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास हो सकता है कि समय की कमी हो सकता है कि परिवार की कमी हो, है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास एक अच्छी सी नौकरी है, घर परिवार है और सभी स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से जिंदगी को सकारात्मक भाव के साथ देखिए और बहुत खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम है ये, हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
1: मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह शाक्य है, मैं टैक्सेशन असिस्टेंट हूँ मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत SGST डिपार्टमेंट में।
0: चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले भी फोन किया है आपने?
1: नहीं मैम,
0: पहली बार फोन किया है। तो इस तरह से आप हमारे नए श्रोता हुए, तो विशेष स्वागत आपका। और अब हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: मैडम, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहते हैं वो ऐसा मानिए कि अगर वो नहीं होंगे तो हमें छोटी छोटी खुशियों का कभी पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होना या नेगेटिव फेस आना बहुत जरूरी होता है, उससे आदमी बूस्ट भी करता है
0: जी,
1: परिवार के साथ में उसकी बॉन्डिंग भी बनती है, बहुत सारी चीजें अच्छी है।
0: जी जी, तो ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, जिसके लिए आप जिंदगी को शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: मैडम, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार के प्रति काफी संतोषजनक हूँ, उनकी बहुत केयर करता हूँ, वो मेरी बहुत केयर करते हैं।
0: एक अच्छा परिवार है आपके पास, है ना?
1: जी मैम।
0: जी जी, तो देखिए, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दृष्टिकोण की बात होती है। जो संतोष और सुख है वो वास्तव में हमारे नजरिए की बात है। तो चंद्रशेखर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे नए श्रोता हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नियमित श्रोता रहें, लगातार हमें फोन कीजिएगा, बस इस बात का ख्याल करके कि एक सप्ताह के अंतराल के बाद ही आप दोबारा फोन करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: शिवम सिंह,
0: कहाँ से बोल रहे हैं शिवम जी?
1: शहडोल, मध्य प्रदेश।
0: शिवम जी, आप हमारे नए श्रोता हैं शायद,
1: जी
0: पहली बार फोन लगा है आपका।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम शिवम जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर आप?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है, क्योंकि
0: अच्छा।
1: वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, रहते हैं मेरी पूरी फैमिली, एंडायरिंग माई एल्डर ब्रदर्स, माई पेरेंट्स, सारी चीजें सब लोग। एंड जो क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी जगह आपको ऐसी चीजें होती हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है,
0: जी जी जी
1: वहाँ पे बहुत अच्छी मेरे जो बड़े भाई लोग हैं और जो मेरे और पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग मुझे बहुत अच्छा गाइड और सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। सेकेंडली,
0: क्या बात है जी।
1: आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर माई जॉब और जॉब ऑन माई हैविंग और अभी जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने में लाइफ कोचेज भी, एज अ लाइफ कोच भी गाइड करते हैं, एज अ कंपनी कोच भी गाइड करते हैं।
0: क्या बात है। तो शिवम जी, आप बहुत खुश हैं कि एक बहुत अच्छा परिवार आपके पास है जो आपका मार्गदर्शन करता है और सपोर्ट करता है जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, और ऐसा ही आपका कार्यक्षेत्र भी है। तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सुख जो है वो वास्तव में वस्तुओं से होता है, चीज़ों से होता है, या हमारे नज़रिए की बात है सुख?
1: नजरिए का होता है, क्योंकि सबकी लाइफ, सबके देखने का तरीका अलग होता है। किसी को मटेरियल हैप्पीनेस होती है, किसी की मटेरियलिस्टिक होती है, किसी को चीजों में खुशी मिलती है, किसी को फैमिली में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। मुझे फैमिली में ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज
0: जी।
1: अगर आपके पास चीजें नहीं भी हैं बट आपके पास एक अच्छा परिवार है, कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका साथ दें, तो जिंदगी आसान लगती है।
0: बिल्कुल। और नज़रिए की बात मैंने इसलिए की कि एक गिलास की हम बात करें कि एक गिलास अगर आधा भरा है तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। कोई कह सकता है कि ये गिलास आधा

0: भरा है और कोई ये भी कह सकता है कि ये गिलास आधा खाली है। तो ये दृष्टिकोण की बात है ना। तो हर जीवन में कमी तो होती है, अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर शिकायतों से भरते हैं तो फिर बात बनती नहीं, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती है, गुणवत्ता उसकी खराब हो जाती है ना।
1: जी
0: तो शिवम जी, आपने आज हमसे बात की, हमें फ़ोन किया और अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक भेजते हैं एक प्यारा

श्रोताओं, जीवन शायद कभी पूरी तरह शिकायतों से खाली नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुक्रिया के कुछ दीप जलते रहें, तो अंधेरे उतने घने नहीं लगते हैं। कभी किसी अपने का साथ, कभी किसी अनजान की मुस्कान, कभी सुबह की धूप, तो कभी कठिन समय में मिली छोटी सी उम्मीद। जीवन हर दिन हमें कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसके लिए ठहर कर धन्यवाद कहा जा सके, आभार किया जा सके, शुक्रिया कहा जा सके। शिकायतें मन को थका देती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को शांत करती है और यकीनन संतोष का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसी सोच और इसी सकारात्मक भावना के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। आप मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ महसूस करते रहिए और जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से कहते रहिए शुक्रिया। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपए की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे वर्ष भर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहराई से पड़ता है। और भागदौड़ वाली इस जिंदगी में संगीत एक थेरेपी की तरह है, और ये थेरेपी अगर आपके पसंद की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संगीतमय थेरेपी, वो भी आपकी पसंद की, कार्यक्रम आपकी फरमाइश के इस पहले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से। लता मंगेशकर की आवाज को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। इंदौर मध्य प्रदेश से विजय, अनिल, नेहा फड़से, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा और सुनील। साथ ही औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेमिसाल का ये गीत।

जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। आप सभी की पसंद है फिल्म अभिलाषा का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आरडी बर्मन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है तीसरी कसम और गायक कलाकार हैं अमित कुमार। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने।

सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, आप सभी ने फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान के इस गीत को सुनने की, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सभी की। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार ने

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

लड़के जवान से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना

0: Cena.
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 12वीं कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना।

0: उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी, सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी, अपने लाडले को समझाएं, उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए।
4: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
5: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
2: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
3: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
6: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सबके हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए 2 शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
7: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
4: वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
8: इनकी शादी हो गई है क्या?
4: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहाँ मिली अभी तक।
8: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
0: समय बीतता रहा। अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
2: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
0: हाँ जाने मन,

0: हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
1: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
0: अच्छा,
1: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
0: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है, कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ। मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
1: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
0: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में ये फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
1: रहने दीजिए, रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
0: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ याद आया, वहाँ आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
1: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने चार पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी, मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
0: ये तो समझती हैं कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बला की खूबसूरत लग रही हो। ये बालों में जूड़ा, ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूँ आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां। बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा, सब बेकार का खर्चा है। पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। कहीं फिर से बुरा मान गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय तुम्हारा हाथ चूम लूं।
1: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए, ड्रामे के लिए देर हो रही है। अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ, साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
2: वाह वाह क्या अभिनेत्री है, शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
3: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
4: बड़े खुश नसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
3: लेकिन साहब इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
5: साहब गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
0: ठीक है, अंदर भेजो।
3: साहब ये 200 रुपए का बिल है।
0: बिल? कैसा बिल?
3: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
0: ओह अच्छा तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है। मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था। हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे,
1: सुनिए जी, श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ तो।
1: हाँ, ये लीजिए।
0: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा, अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूँ। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है? मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठोंक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा चलो मान भी लिया जाए, लेकिन लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम है, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
1: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है?
0: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है?
1: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
0: जाना पड़ेगा क्यों, क्या वादा कर लिया है?
1: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई हैं।
0: तो मेरी जान, तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
1: क्या,
0: इसमें परसों जाने की क्या जरूरत है?
1: अरे जरूरत है भाई, अब आपको ही बता दूं, मुझे नायिका का पार्ट दिया गया है और मैंने उसे मंजूर भी कर लिया है। लगता है साहब ये खबर सुनकर खुश नहीं हुए हैं।
0: फिर वही ड्रामा, मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से मुझे कम से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है, वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए। ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली, अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है। मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले, मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
1: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी, बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
0: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे और कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा, अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता। अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
1: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी, तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
0: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया। लिफाफा देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है? मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
1: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहाँ बैठे देखा होगा, मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
1: तो मौजूद है जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूँ। मुझे तो सीने में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा, मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है। ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा, क्या करूं। क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं। ये क्या, हजामत साफ नहीं है और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है। मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत तो नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फूहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए, मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं, जब तक अपने दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की भी जगह नहीं थी।
1: अरे आज सवेरे से कहां गायब रहे, और ये माथे पर पसीना कैसा?

0: हाँ, जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चला गया था।
1: तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, जिगर का दर्द एक भयानक रोग है।
0: अरे डॉक्टर साहब ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है।
1: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा बीमारी की तह तक पहुँचे भी हैं या नहीं।
2: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा, खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटे। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे, तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे, पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शानो शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार, अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
3: अरे वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
4: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
5: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है?
6: जी जनाब, माजरा कैसा, अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी है ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं है इनके पास।
5: माफ करना, बात काट रहा हूँ, भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो, तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या? क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
0: कैसे कैसे मस्खरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां? आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
4: क्या कातिलताएं हैं,
5: हाय शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा हैं।
4: अजी साहब, फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है क्या अक्षय बाबू?
0: ये क्या, ये तो हिम्मती है, इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी, इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है, बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं। मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया, ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी, अरे हाँ वो तो मुझे ही इशारे से बुला रही है। हाँ चलता हूँ वहाँ। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए, ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या? अरे अरे अरे हेमवती, हेमवती तुम? ओ, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। बस बस हेमवती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो। मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हाँ हेमू, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई नव निर्वाचित सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपए की राशि अंतरित होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक प्रदेश में आज से विशेष अभियान हर घर योग चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मियों की तेज धूप और उमस भरा मौसम न केवल असहज लगता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जिनमें से कई को समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल सावधानियों और जागरूकता के साथ आप इस खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो सबसे पहले सखियों, ये जानने की जरूरत है कि हीट स्ट्रोक और हीट थकावट में अंतर क्या है। शरीर जब अत्यधिक गर्मी से थक जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है, तब यह स्थिति होती है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का ठंडा और नम हो जाना, कमजोरी और थकावट, चक्कर आना, सिर दर्द होना, धड़कन तेज या धीमी हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है सखियों? त्वचा का गर्म और सूखा हो जाना, भ्रम और बेहोशी या दौरे वाली स्थिति हो जाना, धड़कनों का तेज हो जाना। तो आप समझ ही गई होंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। और अब जानते हैं इसके इलाज और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। व्यक्ति को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, शरीर को ठंडे पानी से स्पंज करें, ढीले कपड़े पहनाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दें। वहीं अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। शरीर को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करें, बर्फ के पैक, ठंडी तौलिया वगैरह इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे तक कोशिश करें कि धूप में ना निकलें, हल्के ढीले और सूती कपड़े ही पहनें, दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिएं, इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी, शिकंजी हमेशा लेते रहें, बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है सखियों। हीट स्ट्रोक और हीट थकावट को रोकना पूरी तरह संभव है, बस जरूरत है सही जानकारी, सतर्कता और समय पर कार्यवाही की। तो सखियों, बहुत सी जानकारी और भी देंगे आपको आगे कार्यक्रम में। पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

क्यों आज 12 मई है। हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, फसलों की कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि कीटों के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 40% फसलों का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2018 में इस दिन की घोषणा की, जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की एक विरासत है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कृषि व्यापार को सुरक्षित बनाने में पौधों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पौधे हमारे जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितने आवश्यक हैं।

अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी, जो 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक सरकारी कार्यक्रम है। यह योजना 40% तक के भारी सब्सिडी के साथ 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरों में ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल कम करना है। आवेदन करने के लिए आप pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर।

0: न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इन्हीं इरादों और वादों के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेरी उड़ान क्रम का। आज हमारे साथ हैं सपना यादव, का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आजकल हम हर जो मूवमेंट होता है, क्षण होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी अवसर। और कुछ भी सेलिब्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है केक की, तो हम महिलाओं के लिए इस केक के बिजनेस में कितना सुनहरा अवसर है। सपना जी, सबसे पहले ये बताइए, केक का बिजनेस शुरू करना है, ये आइडिया आपको कैसे आया?
1: केक का बिजनेस करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली कोविड के समय सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को कुछ अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मुझे कुछ अवेलेबल नहीं था। मेरी एनिवर्सरी थी अप्रैल में, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या केक कैसे मिलेगा। बस वहीं से मैंने कुछ घर के सामानों से बनाया केक, फिर उसका स्टेटस रखा। जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नेबर्स थे, तो उनको भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट।
0: कोविड के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन मिला कि आपने घर के लिए बनाया और फिर आपको बाहर से ऑर्डर मिलने लगे। तो अभी आपको कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं केक के?
1: अभी मुझे वीकली मिल जाते हैं 5 से 6, या फिर कभी कभी मुझे एक दिन में 3 या 4 भी बनाने पड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी देना पड़ता है और फिर लेट नाइट भी देना पड़ता है। तो ये चीजें मैं फिर ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं मंथ में 15-20 ऐसे ऑर्डर्स हो जाते।
0: तो सपना जी ये बताइए कि जब आपने पहला केक बनाया उसका आपका एक्सपीरियंस क्या था?
1: वो तो बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैंने जो मैं देखती थी, कभी सोचा नहीं था कि ये केक्स हम बना सकते हैं। बहुत खुशी हुई तब मैंने बनाया और मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने तारीफ की, तो वो तो एक स्पेशल ही होता है हस्बैंड की तारीफ मिले।
0: जब अपने किसी हुनर की कोई तारीफ करता है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और सपना जी, सबसे पहले जब आपने सोचा कि आपको केक बनाना है, तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी?
1: देखिए, केक बनाने के लिए तो हमारे घर में जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, हम केक उससे भी बना सकते। किचन में सोडा भी यूज होता है, बेकिंग पाउडर भी होता है, शुगर भी होती है, ये सब बेसिक चीजों से ही केक बनता है। फिर हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, वो एसेंस के होते हैं उसके। तो अगर आप सिंपल केक बनाएंगे तो एसेंस की नीड नहीं है, नहीं तो आप घर के ही बेसिक सामान से ही केक बना सकते हो। आपको कोई मैदे की जरूरत नहीं, कोई सूजी की जरूरत नहीं, आप घर के गेहूं के आटे से भी आप केक बना सकते हैं। इवन शक्कर नहीं है तो आप गुड़ भी डालकर केक बना सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम गुड़ से भी केक बना सकते हैं। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं। हाँ, हमें एडवांस लेवल पर जाना है।
0: अच्छा,
1: तो हमें चीजों की जरूरत
0: है। इतने सारे ऑर्डर्स आपके पास आते हैं तो अभी तो आपको बहुत सारे इसमें लगने वाले सामानों की जरूरत पड़ती होगी, तो खुद मार्केट जाकर लाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती हैं?
1: नहीं, वो मैं खुद सर्च करती हूँ मार्केट में। जैसे जैसे नई चीजें आती है मैं मार्केट खुद जाकर सर्च करती हूँ, और फिर जैसे मुझे जिस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे आजकल बच्चों को थीम केक चाहिए, डोरेमोन केक चाहिए, बार्बी गर्ल थीम, तो ये सब अलग अलग थीम चल रही है आज।
0: इतना बारीक काम है कि इसमें बहुत सारे टाइम की जरूरत पड़ती
1: है। ये वो केक को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, पर जब उस चीज में आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है उन चीजों को, तो आपके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे आप रोटी नहीं बेलते हो।
0: अच्छा।
1: फटाफट, जैसे एक लेडी को कितनी आदत हो जाती है रोटी बेलने की, उस तरह से केक आपका बनना। अगर मुझे कोई ऑर्डर देता है 2 घंटे पहले तो मैं केक रेडी करके दे दूँ।
0: 2 घंटे में अगर एक केक बनाना चाहे तो आराम से बन जाएगा।
1: आराम से
0: जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से संभालते हो और आप केक के लिए आराम से टाइम निकाल लेते हो।
1: ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलूंगी कि मुझे घर में रहकर मैं घर भी संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ और मैं ये काम भी कर पा रही हूँ। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं।
0: एक सवाल और था आपसे, जैसे जो सखियां चाहती हैं, जैसे उनको भी पता है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, उनमें भी हुनर है किसी चीज का, या सपोज वो केक ही बनाती हैं, अच्छा बना सकती हैं, इसकी शुरुआत वो कैसे करें?
1: शुरुआत तो सबसे पहले हमें केक का बेस, जो स्पॉन्ज बोलते हैं जिसको, ड्राई केक बोलते हैं, उसमें आप पहले बनाइए, एक दो बनाइए, चॉकलेट का बनाइए, वनीला बनाइए, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं।
0: तो इसके लिए प्रॉपर कहीं ट्रेनिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं?
1: कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल हूँ जिस मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग भी अगर आप लेते हो और ट्रेनिंग करके छोड़ देते हो, आगे कुछ नहीं करते, पर आपको ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्रैक्टिस तो लगती है।
0: प्रैक्टिस
1: आपके हाथ में सफाई आने के लिए आपको खुद को कम से कम 10 केक बनेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही बना पा रही हूँ।
0: तो जैसे कोई हमारी सखियां हैं घर पर ही शुरू करना चाहती हैं केक का बिजनेस, तो मिनिमम उनको कितने अमाउंट की जरूरत हो?
1: आप मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके, क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उससे आप स्पॉन्ज बना सकते हैं। फिर आपको क्रीम चाहिए, टर्निंग टेबल चाहिए, स्पैचुला चाहिए, नाइफ चाहिए, इसके लिए आप 1000 रुपीज इनफ है। 1000 रुपीज 1500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
0: और ओवन भी जरूरत पड़ती होगी?
1: देखिए ओवन तो मैं खुद अभी कोविड के 2 साल मैंने बनाया, मेरे पास कोई ओवन नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी एडवांस कोई मशीन नहीं थी। मैंने अपना केक 2 साल तक कम मैं बता दूं हंड्रेड्स ऑफ केक मैंने कढ़ाई और कुकर में ही बनाए।
0: तो बहुत अच्छी बात है सपना जी, और बहुत सी हमारी सखियां होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनमें एक डर होता है, एक हौसले की शायद कमी होती कमी है, वो आगे बढ़ नहीं पाती, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: सखियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और किसी भी चीज को देखकर घबरा जाना या डर जाना, कोई केक हम मेरे लिए भी पहले मैं देखती थी कैसे बनता होगा, पर कोई स्पेशली लेडीज के लिए तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, कर सकती हैं वो, बस अपने अंदर के हुनर को पहचाने तो सब कुछ पॉसिबल है।
0: बिल्कुल सही बात कही है कि अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। अगर आपने कोई प्रतिभा है, और जरूर होगी, हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और तराशने की। मेरी उड़ान क्रम में सपना जी आप आई, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

सखी उस खूबसूरत से गीत के बाद अब बारी है फूड जोन की। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और लू से बचने के लिए सत्तू यानी कि चने का आटा सबसे बेहतरीन और सस्ता घरेलू उपाय है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है सखियो। तो आइए आज आपको बताते हैं क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत के बारे में। यह सबसे आम और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो पेट को तुरंत ठंडक देती है। तो इसमें लगने वाली सामग्री को लिख लीजिए सखियो। 2 बड़े चम्मच सत्तू, 1 गिलास ठंडा पानी, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया। और सखियो आप जानते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 गिलास में सत्तू और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोल ले ताकि गांठे न पड़े। फिर बाकी पानी, नींबू, काला नमक, जीरा मिर्च और धनिया मिलाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ये क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सखियों आपको बता दें कि सत्तू का सेवन सुबह खाली पेट या दोपहर में करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सखियों फिर से लेकर चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: सखियों, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां यह हमें सीखने और जुड़ने के अवसर देता है, वहीं छोटी सी लापरवाही किसी भी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे सकती है। ऐसे में महिलाएं सुरक्षित डिजिटल अनुभव के लिए कुछ अनिवार्य कदम उठा सकती हैं। इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी ऑनलाइन चली गई तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, बच्चों के स्कूल का नाम या वित्तीय विवरण साझा ना करें। आप इन्हें सीधे अपलोड भले ही नहीं करती, पर कई बार अनजाने में किसी पार्सल या अवार्ड को दिखाते समय ये सूचनाएं गलती से पोस्ट हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।
1: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए

सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। कलाकार हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिखा शर्मा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने शिखा शर्मा के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: नसनसनी नसनसनी नसनसनी ना उत्तेजना ना उत्तेजना नशोर दिन रात नशोर दिन रात
1: चोरी चोरी किया
0: ना ही अहंकार केवल मनोरंजन ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
3: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: आपका संदेश आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गायक कैफी आजमी के लिखे गीत से। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हकीकत।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने, फिल्म है गुमराह।

फिल्म गुमराह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र, पदक और 1,00,000 रूपए नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरनी होगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया,
1: 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं।
0: मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आईपीएल में कल रात धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। वहीं आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आंधी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज लॉयंस क्लब के भोजन सेवा केंद्र भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। राजगढ़ के पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड के घायलों से मंत्री गौतम टेटवाल ने आज शाजापुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आगरमालवा में व्याख्यान का आयोजन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने नर्मदापुरम संभाग का पदभार संभालते ही कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जबलपुर के रामसागर तालाब में डूबे 2 युवकों में से एक का शव आज सुबह बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु

0: के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,500

0: अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म है तेरे नाल लव हो गया।

आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें भेजी थी बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते थे संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। अकोला से गांधीबाग के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की यही फरमाइश थी। अमरावती महाराष्ट्र के सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया और उनके सभी साथियों ने इसी गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत। पसंद करने वाले हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदित्य, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणिता गवाणकर की फरमाइश आई है। बहादुरा नागपुर से शैलेश, सुमित, श्वेता, ध्वनि और टुकटुक गवाणकर ने भी ये फरमाइशी पत्र भेजा है। शाजापुर मध्य प्रदेश से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत भी यही गीत सुनना चाहते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही पसंद है। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध गीत। आवाज़ शफकत अमानत अली और क्लिंटन की है। फिल्म है जोड़ी ब्रेक।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रांझणा से। जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और पूजा के गाए इस गीत को संगीत से संवारा है एआर रहमान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेजी है। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सोना शारदा, दामिनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल और मिगलानी परिवार के सभी सदस्यों ने मलौट कैंप पंजाब से अपनी फरमाइश भेजी है। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

इरशाद कामिल का लिखा एक और गीत आप सुनेंगे, चिन्मयी श्रीप्रदा और आतिफ असलम की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने। फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं अनिल कवचाले, नेहा फटसे, सीमा, सबीहा, पूजा, नेहा, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी। इंदौर से ये पत्र आया है। पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीतारानी जाजौरिया, गगनदीप और बेबी आरजू ने भी अपना फरमाइशी पत्र हमें भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की फरमाइश आई है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता भी अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। तो आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा का गाया

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कौसर मुनीर का लिखा गीत विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। फिल्म है गोरी तेरे प्यार में और इस गीत को आवाज दी है नीति मोहन और कमाल खान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, कमलेश जयपुरिया, अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, लालचंद्र मिश्र और नरेंद्र कुमार राम ने भिलाई और रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की फरमाइश है। प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने गौतम नगर जिला नांदेड़ से अपना पत्र भेजा है। भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की भी यही पसंद है।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब सुनते हैं इस घंटे की खास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय

परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे

ये आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकवाणी, जिसमें गीत संगीत चर्चा और रोजगार सूचनाएं शामिल होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कृषि के साथ वानिकी के लाभ विषय पर ली गई भेंटवार्ता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, साथ ही होंगे बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल रहेगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8:00 प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित दिनकर कैंकिनी का ख्याल गायन, राग होगा सावनी बिहार। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल लिसाम्मा पीवी ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को बधाई दी। मेजर लिसाम्मा ने अथक परिश्रम करते हुए निरंतर सेवा करने और अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ रोगियों की देखभाल करने के लिए उनकी सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की

0: कोर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। और IPL मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हर मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है। वक्त चाहे कितना भी सख्त हो, हौसला अगर पक्का हो तो रास्ता भी अपना बनता है, क्योंकि जो अपनी सोच बदल देता है वो अपनी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, आशा करते हैं कि आप इस भीषण गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे। पानी पीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि धूप में बाहर ना जाएं, भीषण गर्मी से बचें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में, चर्चा करेंगे नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह पर, और साथ ही साथ हरित आदतें कैसे हम युवाओं की नई पहचान बन रही हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों धुरंधर से अभी आपने ये गीत सुना, संगीतकार शाश्वत सचदेव और रोशन और गीतकार इरशाद कामिल और साहिल लुधियानवी। आप सभी सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्याचार्य। दोस्तों पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। हम जो हवा लेते हैं उसका 80% ऑक्सीजन पौधों से आता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 90% हिस्सा वनस्पतियों पर निर्भर करता है। पौधों के इसी महत्व को समझते हुए और उनके स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल आज ही के दिन यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि पौधों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ा है। बात करें चुनौतियों की तो जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, जैव विविधता में बदलाव से ये सब चुनौतियां हम सभी देख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इसीलिए आज के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है और इस साल की थीम है पादप स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार और डिजिटल नवाचार, प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल इनोवेशन। एक छोटी सी कविता से इस थीम को और बेहतर समझा जा सकता है। जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित, हवा की खुशबू, मिट्टी का मान, पौधों में बसती है सबकी जान, पर आज खामोश खड़ी है हरियाली, बीमारियों ने चुराई है इसकी लाली, जो बीच सरहद पार से आते हैं संग अपने अनचाहे दुश्मन लाते हैं। सुरक्षित व्यापार का अब संकल्प ले हम, फसलों की आंखों में ना हो नम, अब हाथ थामेंगे नवाचार और विज्ञान का, रास्ता खुलेगा तरक्की और मुस्कान का, डिजिटल नजर से सब फसलें पहचानी जाएंगी, बीमारी आने से पहले ही हार मान जाएगी, सिर्फ एक दिन नहीं ये हर पल का है वादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा। दोस्तों 2026 का ये पैगाम याद रखना है कि पादप स्वास्थ्य रहेगा तो ही हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी खामोशी में ही हमारा भविष्य छिपा है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक वादा है कि हम अपनी धरती को हरा भरा रखेंगे, क्योंकि अगर जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की।

आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह, और उन प्रयासों की जो हमारे आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। भारत में सकारात्मक बदलाव, नक्सलवाद में गिरावट। अब अगर हम भारत की ओर देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक समय था जब नक्सलवाद देश के कई हिस्सों में गंभीर चुनौती बना हुआ था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीति, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और सरकार की विकास उन्मुख नीतियां हैं। आत्मसमर्पण हिंसा से विश्वास की ओर। दोस्तों, इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसमर्पण। हजारों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। सरकार ने उन्हें पुनर्वास, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। ये दर्शाता है कि जब अवसर और विश्वास मिलता है तो बदलाव संभव है। विकास की नई किरण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से विकास हो रहा है। नई सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है, जिससे गांव शहर की दूरी कम हो रही है। स्कूल और अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर लगातार सुधर रहा है। पुनर्वास और सशक्तिकरण का एक नई शुरुआत। सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत पूर्व नक्सलियों को घर और जमीन दी जा रही है, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल उनका जीवन बदल रहा है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक माहौल बन रहा है। आम नागरिक की भूमिका। साथियों, किसी भी समाज में स्थायी शांति केवल सरकार या सुरक्षा बलों के प्रयासों से नहीं आती, उसमें आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहिए कि हम अफवाहों से दूर रहें, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से की ओर प्रेरित करें। आज की चर्चा ये स्पष्ट है कि जहां एक और दुनिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, वहीं भारत में नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा रहा है। ये बदलाव हमें उम्मीद देता है कि सही दिशा, मजबूत इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयासों से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों शंकर महादेवन की आवाज़ में भी आपने गीत सुना लक्ष्य से। और अब हम बात करने वाले हैं हरित आदतें। जब युवा इन आदतों को अपनाते हैं तो वे समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हैं। आज की युवा पीढ़ी यह समझती है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ेगा, इसीलिए वो सिर्फ ये सारी चीजें पढ़ते नहीं हैं बल्कि अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना, सुरक्षित भोजन, प्राकृतिक खेती और आहार का, ये सब युवा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने अपनी कूल दिखने की परिभाषा को बदल दिया है। प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं, कपड़े के बने बैग्स का यूज, शहर में मिट्टी के घरों को बढ़ावा देना, ये सब युवा सोशल मीडिया से देखते हैं। और आजकल सस्टेनेबल लिविंग एक ट्रेंड भी बन चुका है, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डिजिटल क्रांति हरित आदतों को घर घर तक पहुंचा रही है। हरित आदतें युवाओं की एक ऐसी नई पहचान है जो ये दर्शाती है कि वे आने वाली पीढ़ी के प्रति कितने गंभीर हैं। जब

युवा हाथ में कपड़े का बैग लेकर निकलता है या पौधारोपण की पहल करता है, तो वह केवल पर्यावरण नहीं बचा रहा होता, बल्कि एक नए समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा होता है। छोटे बदलाव ही आगे जाके एक बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करेंगी। अब वक्त हो चला है महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पद की संख्या है 11,127। आवेदन देने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। अधिक जानकारी आप rrbapply.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर भी। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत ज़रूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
1: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
3: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत रॉक स्टार फिल्म से लिया गया है। आवाजें हैं मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की। इरशाद कामिल के बोलों को संगीतबद्ध किया AR रहमान ने।

कार्यक्रम का अगला गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ है। धुन बनाई AR रहमान ने, अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं। इस गीत को हमने लिया तमाशा फिल्म से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR
1: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस अदालत में 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व के अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट UG पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जाँच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये समय है कार्यक्रम सदाबहार गीत का। हमारी स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है शाम के 6:11 और आपके साथ हूँ मैं ज्योति भारती। तो दोस्तों, आज शाम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेंगे। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले, जिसमें होंगे पुराने गीत। 8:10 पर कार्यक्रम होगा मधुरिमा, और ये कार्यक्रम होगा रागों पर आधारित गीतों का। 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम हर सिंगार का, और 11:10 पर आप लुत्फ उठा सकेंगे कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत का। आइए कार्यक्रम सदाबहार गीत में सुनते हैं पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म अभिला।

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और सदाबहार गीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म फ़र्ज़ से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत, और फिलहाल इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी 7:25 पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्या वार्ताः। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे चतुर्दश पञ्चदश दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पञ्चदशभ्यः परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्णसहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षकबलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।

आनंद फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गुलजार का लिखा हुआ। संगीत तैयार किया सलील चौधरी ने, आवाज़ लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लिखा है इंदिवर ने। धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने, किशोर कुमार की आवाज़ है और इस गीत को हमने लिया कलाकार फिल्म से। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

0: वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान संधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं कृषि के साथ वानिकी के लाभ, इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम बता दें सुर्खियों में, यह कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात 8:15 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे आज रात 10:00। रात 9:30 सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं महफिलें समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 सुनिएगा पंडित दिनकर कैकिनी का गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 बजे। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिएगा प्रेम शंकर शर्मा के गाए भजन। प्रदेश की सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 बजे। 10 बजे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम महिला संसार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 बजे सुनिएगा पंडित गिरिराज का सितार वादन राग वसंत मुखारी। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुन सकते हैं मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। आपकी फरमाइश होगा दिन में 12 बजे। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कल सुनिएगा जादूगर को सलाम का भाग 13। समय रहेगा 2:30 बजे। 1:30 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी ग्वालियर की ही प्रस्तुति में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर, माफ कीजिए 2:02 और 2:30 पर आपकी फरमाइश के अंतर्गत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:33, शाम 6:30 बजे और रात 8:15 पर। 6 बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8 बजे। रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। बन गया जीतू जेंटलमैन वसीम खान का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे कल रात 10 बजे, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। राग रजनी कार्यक्रम में 10:30 बजे सुनिएगा पंडित गिरिराज का सितार वादन राग रागेश्री। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे शुरुआत। ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल होगी जारी। 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1,835 करोड़ से ज्यादा रुपए। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15

0: 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
1: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा और इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश जैसे की नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इको सिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे। बैठक में शामिल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप और भारत में फ्रांस के राजदूत थेरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को न नया आवेदन करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया,
2: इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी, एक आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी, उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइबर अपराधों और बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संदिग्ध लोगों का डेटा AI सिस्टम को दिया जाएगा, जो उन बैंक खातों को पकड़ेगा जिनका इस्तेमाल साइबर ठग ठगी की रकम इधर उधर करने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला प्रकरण की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई। करीब 2 घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष ने ASI की 98 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह स्थल मंदिर है या मस्जिद। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को वाग देवी मंदिर बताते हुए पूर्ण अधिकार की मांग की है। इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। भारत से होने वाले कुल गेहूं निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 35 से 40% है और शरबती व ड्यूरम गेहूं की मांग अमेरिका, जर्मनी, इटली और दुबई जैसे देशों में बनी हुई है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीडी बंसल आज अपने सरकारी आवास से 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सभी को साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। देवास जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोरूखेड़ी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 कंटूर ट्रेंच बनाई गई हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब 13 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी एआई की पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के 11-11 मैच में 14-14 पॉइंट्स हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना, झाबुआ और बैतूल में जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आगरमालवा में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य में नलखेड़ा ग्रामीण के सर्किल 20 ने तय समय से पहले 100% काम पूरा किया। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को ईंधन बचाने के लिए काफिले में केवल जरूरी वाहन रखने के निर्देश दिए। देवास में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी। जिले को 196 सीटों का कोटा मिला है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मादा चीता के चारों शावक मृत पाए गए। सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शव मिले। शहडोल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर, माफ कीजिए, सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ग्राम सभा सुनवे बारे हमारे सबई सबई भैया बहन खो पहुंच जावे हमारी ने और इस ने भरी राम राम
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों का जय जमुना बहन की राम राम। भैया बहनों, गर्मी तो देखो कोई पड़ रही है और जो गर्मी के संग संग जो लू लपट चल रही है, बाकी तो भैया कहने ही कहा है। देखो बस ये है कि जब मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन अपनी अपने घर के बड़े बुजुर्गन की, अपने छोटे छोटे मोनी मोणन की देखभाल करें, ध्यान रखें उनको, कि जो गर्मी को असर लू को असर उन पर विपरीत ना हो पावे। कैसे कि मौसम कोनो भी हो, अगर हम तनिक भी लापरवाही बरतते हैं तो बाको सीधो सीधो असर हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी सेहत पे पड़ता है। तो भैया जाके लाने जो ये कहेंगे कि देखो जैसे गर्मी होते धूप फैलत है, यानी कि अपन देखें टाइम के 11-12 बजे के आसपास खूब तेज दोपहरिया होने लगा था और तब से लेके 4 बजे तक अपने जब तक बहुत आवश्यक काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, और अगर निकले भी तो सिर पे अंगोछा बांध लें और अपने अच्छी तरह से ऐसे कपड़ा पहन लें, पूरी आस्तीन के सूती कपड़ा पहने, ताकि लू लपट को असर अपने ऊपर ना हो पाए। और घर के बूढ़े बुजुर्गन को तो पूरी तरह से आराम ही कर दें, और छोटे छोटे मोणी मणन को भी। अब देखो छुट्टियाँ तो चल ही रही हैं, तो ऐसी कोनो वो नहीं है कि उनको बाहर जाने हो, तो प्रयास वही करें कि बच्चन की बुजुर्गन की सुरक्षा रहे। और जय के संगे संगे बहुत ज़रूरी है सुरक्षा हमारे पशुअन की। देखो भाई अपन ठहरे किसान और किसान खिलाने पशुधन के समान है, और जिस तरह से अपन अपने घर के परिवार के सदस्यन की रक्षा कराते हैं, सेहत की रक्षा कराते हैं, वैसे सुरक्षा कराते हैं, ठीक वैसे ही ज़रूरी है कि हम अपने चाहे तो वे दुधारू पशु हों, चाहे वे दूसरी खेती किसानी में काम आवे वाले पशु हों, उनकी सुरक्षा भी उतने ही मुस्तैदी से करें, उतने ही देखभाल उतने ही ध्यान दे के करें जितने कि अपन घर के दूसरे सदस्यन की कर रहे हैं। कैसे कि भैया देखो अगर अपना पशु बीमार होते हैं कोनो भी तरह से, विपरीत असर स्वास्थ्य के ऊपर बाकी होते हैं, गर्मी को हो चाहे मौसम की लू की चपेट में वो आ जाए, तो बासे प्रभावित कौन होते, किसान या पशुपालक। अपन को चाहिए कि अपनों पशु जो है पूर्णतः स्वस्थ रहे, बाकी लाने अपन ध्यान देवें कि वह सही समय पे पानी पिलाएं, है ना, ठंडो पानी पिलाएं और सुबह शाम ध्यान रखें, और अपने अपन जहाँ बांधत हैं रात के समय अपन देख लें अच्छी तरह से कि अगर सही व्यवस्था नहीं है तो बाकी लाने अपन प्रयास करें कि अपने पशुओं को अच्छी सही बांधने की व्यवस्था हो, उन्हें कहीं से गर्म हवा ना आ रही हो। दिन में ऐसे अपन देख आते हैं कि नहीं चरवे भेज जाते हैं तो घर में ही रहते हैं पशु सार में, तो बाँ में झूल या फट्टी से बाँ पर्दा डाल दें ताकि वह गर्म हवा की चपेट में अपना पशु ना आए, और बाहर जब अपन भेज जाते हैं तो अपन देखें कि अपन संग में जाए पशु की देखभाल करें। देखो जा समय तो कहूँ जा रहा है नहीं है कि अपन चरवे के लाने भेजें, पशु जाते थे उते फिरते और वो अपने लू की या गर्मी की चपेट में आ जाते तो वो बीमार पड़ सकते, तो प्रयास करें कि भाई जो है खूटा पे ही अपन भाई पानी दें, वहीं सानी बना के दें ताजी, और बाकी लाने जो भी पोषक आहार है वो उपलब्ध कराएं। भैया चर्चा अभी और करें, लेकिन बाद से पहले कुछ जरूरी संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर

भैया मैंने बात कर रहे थे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल की, तो जहाँ में जो भी आउट है कि भैया मौसमी जो बीमारियाँ होती हैं उनसे भी अपने पशुओं को अपन को बचा के रखने हैं, बाकी लाने समय समय पर टीकाकरण कराएं ताकि जो बीमारियाँ मौसम के अनुसार पशु वर्ग में जन्म लेती हैं या फैलती हैं उनसे अपना पशु सुरक्षित रहे। तो भैया पूरी पूरी सावधानी से अपने पशुओं की सही सही देखभाल करें, उन्हें सही दाना पानी जो भी खा भी खिलाने अपन देते हैं वो देवें, अपन को ताज़ी सानी उन्हें बना के देने हैं, रखी हुई बिल्कुल नहीं देने हैं। कैसे कि देखो भोजन उनके लाने वो ही महत्वपूर्ण है, वो ही उनके लाने पोषण आहार है। जैसे अपन अपने भोजन को पूर्व पूर्व ध्यान रखते हैं कि ताजा भोजन करते हैं, है ना, माँ में सभी पौष्टिक चीज़ें शामिल करते हैं, वैसे ही अपन को अपने पशुओं को ध्यान रखने हैं कि उन्हें पूरे पौष्टिक तत्व मिले ताकि वे उनकी भी बढ़वार अच्छी हो सके, वे स्वस्थ रहें, और जो दुधारू पशु हैं वो अच्छा दूध दें, दूध उत्पादन गर्मी के मौसम में थोड़ा कम हो जाते, जो बात को ध्यान रखने हैं, तो उनकी पूरी पूरी सही सही देखभाल करें ताकि अपने पशु पूर्णतः सुरक्षित रहें और अपन अपने पशुओं से पूर्व पूर्व लाभ ले सकें। और देखो पशु को कोनो तकलीफ होती तो वो अपन को बोल के नहीं बता सकते, कैसे कि वो बेजुबान प्राणी होते हैं भैया, तो अपन को बाकी तकलीफ खुद ही समझने हैं। तो सभी भैया मैंने से जो ये कहो है कि अपने जो दुधारू पशु हैं या जो अन्य खेती किसानी में काम आने वाले पशु हैं उनकी पूरी पूरी देखरेख करें और गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से उनकी देखभाल करें और उन्हें यूं ही इधर उधर घूम भी ना छोड़ दें। अपन देखा था भैया, हम कहूँ जाते तो सड़क पर मुलक पशु दिखाई देते हैं, और कई बार कोनो भी वाहन की चपेट में आके पशु को हानि भी हो जाते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं और कभी कहूँ तो पशु की जान भी चली जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से हमारे पशुओं को ना गुजरना पड़े जाके लाने सभी पशुपालक भैया से, सभी किसान भैया से जो ये कह वो है कि भैया अगर अपन पशु रख रहे हैं तो उन्हें पूरी देखभाल करें, वे कहाँ जा रहे हैं और कैसी स्थिति में, सब चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो भैया जो तो भाई बात अपने पशु की देखभाल की चर्चा की, और अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। कैसे शासन की मंशा है कि समाज के सभी वर्ग तरक्की करें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और सबको मुख्य आवश्यकता जो भोजन की होती है वो खाद्य सामग्री समय पे उपलब्ध हो सके, पोषण आहार प्राप्त हो सके, यही उद्देश्य से शासन की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलाई जाती हैं और यही कड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आउट है और जाकी शुरुआत यही उद्देश्य से भई है कि अपने जौन अपने जन समुदाय है बाय मुख्य रूप से चावल गेहूँ दालें मोटे अनाज तिलहन ये सब जो है अपने समय पे प्राप्त हो सकें और इनकी जो है अच्छी वृद्धि भी हो, इनकी उपज भी बढ़िया रहे। कैसे किसान को काम है कि अन्न उपजाओ थे वो खेत में और अन्न उपजा के वो समाज में दे थे, जैसे कि हम अपने जो है उधर पोषण करते हैं, तो किसान जो है अपने अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार बढ़ाओ पाए, अन्न उपजाए, फसलें अच्छी तरह से पैदा करें और उनकी फसलें सुरक्षित रहें, ऐसी ही बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती हैं। भैया हम आगे चर्चा कर रहे हैं और जब समय मिले, लेकिन घड़ी अब कह रही है कि हम आपसे विदा ले लें, तो सभी भैया बहनों को जमुना बहन को अब आज्ञा दो चौपाल कार्यक्रम से, सभी भैया बहन को राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली

0: भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सगे भैया बहन खा मंगरू भैया की राम राम। और संग बैठी
3: जमुना बहन सवैया जमुना बहन की तरफ से भी सभी किसान भैया बहनों को राम राम और मंगरू भैया आपको भी राम राम।
2: और किसान भैया देखो अपन देख रहे हैं कि इस समय चल रहा है बिल्कुल गर्मी का मौसम है
3: ना।
2: वो किसान भैया के हो गए खेत खाली तो अब किसान भैया के लाने आप जैसे जिन भैया के पास पानी नहीं है तो उन भैया के लाने बड़ा अच्छा समय चल रहा है कि इस समय में जैसे अच्छी पैदावार अपने आगे लेने हैं तो बाग में अपन कछु काम अब अगर गर्मी के मौसम में कर लें तो बाद से अपने लाने आगे आवे वाली जो फसल है उसमें अपने लाने बिलास फायदा उसे मिल सका थे।
3: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
2: तो जहाँ मैं कहा है कि देखो सबसे पहले तो जो है अपने लाने चाहिए कि अपन गहरी जुताई करें।
3: हाँ,
2: अगर भूमि की अपन ने गहरी जुताई कर ली तो जो समझ लो कि अपने लाने जो है एक तो नीचे की माटी ऊपर हो जाता ऊपर की माटी नीचे पलट जाते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और दूसरी बात यह है कि जैसे फसल को जो है आनी पहुँचाए बारे कीट रहते हैं रोग रहते हैं बस जो है ये तेज धूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो एक फायदा जो होगा। दूसरी बात यह है कि अपन देख रहे कि जेठ डोंगरे पर रहे कहूँ कहूँ पानी पड़ जाता ना जोर से तो बाम में कहा है कि बड़े जब डीलन में जब पानी ऊपर से पड़ा था ना तो बड़े ये फूट जाते भी।
3: बिल्कुल भैया
2: है ना। तो बाम में दूसरे वो खेत को पानी पूरे खेत में ही रहे थे।
3: हाँ।
2: बाकी फिर अपन दूसरे पे जुताई कर सकते तो माटी भुरभुरी हो जाते हैं।
3: बिल्कुल भैया।
2: तो जो काम को अपने लाने करना चाहिए है ना। और आगे भी आप फसल में उसमें खेत में अपन करेंगे तो बाम में कहा है कि जल धारण क्षमता बढ़ जाते हैं अधिक समय तक नमी बनी रहते हैं फसल की पैदावार बिलात अच्छी होते हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो अपने लाने गहरी जुताई करना ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात यह है कि अपने खेत में जैसे मेड़बंदी को काम है तो मेड़बंदी को काम भी अपन जो है ये गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखा था बिलात किसान भैया ने हमने खेत देखे कि खेत और मेड़ में कोई अंतर नहीं दिखते।
3: हाँ,
2: खेत और मेड़ एक से दिख रहे जा समय। तो अपन चाहिए कि मेड़ तनक ऊंची रहे खेत नीचो रहे तो वहां को फायदा क्या होती है। तो अपने कहा है बरसात में निकल भी हमें अपने लाने अच्छी सुविधा हो जाए। दूसरी चीज बढ़िया घास उगा थे तो वह अपने अगर पशु पाल रहे हैं तो इनके लाने जब मेड़ मेड़ पर कटाई करा था ना तो दो चार गाड़ी घास जो पैदल निकल आते हैं पहला ने तो पशुधन के काम में आते। तीसरी बात यह है कि जब खेत को पानी पूरे खेत में ही रहे थे मतलब बाहर निकल के नहीं जाते और नहीं तो कहा है कि ऐसे में अगर पानी पड़ जाए तो पूरी खेत की माटी बह बह के पूरी बाहर निकल जाते तो बाकी जो भूमि के जो पोषक तत्व तो होते हैं बस अब जो है निकल के बाहर पहुंच जाते हैं। अब जी से कहा है कि पैदावार पे असर
3: पड़ा थे
2: तो अपने लाने चाहिए जो काम को भी कर सकते हैं। अगलो महत्वपूर्ण काम है कि अपन जो है गोबर को खाद जी समय में अपन खेतन में अच्छे से फैला सकते हैं पूरे डाल दो बढ़िया से दो चार बेड़ अच्छी जुताई कर दो तो वहाँ में कहा है कि माटी में वो पूरी तरह से अच्छे से मिल जाते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और भाई में पानी पड़ जाए तो और अच्छे से मिल जाते हैं। तो जब अपन गोबर की खाद को खेत में अपने जरूर डालना चाहिए है ना। जहाँ में प्राकृतिक खाद जैविक खेती अपन किया था ना ये सब काम को अपन को अपनाना चाहिए। रासायनिक खादन को छोड़ा तो भाई अपने चाहिए कि अपन जैविक खेत गोबर की खाद ही पे वर्मी कम्पोस्ट ही पे आना चाहिए।
3: बिल्कुल भाई ये सही कह रहे हैं। और देखो अब दो तीन दिन पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोई जनता को संबोधित करो जो बात बताई अपने किसान भैया के लाने।
2: बिल्कुल। रासायनिक खाद की जगह अपन जैविक खेती प्राकृतिक खेती को अपना है ना।
3: बिल्कुल। उन्होंने जो सात जो सूत्र बताए हैं उनमें जो पांचवें नंबर की बात है वो यही है अपनी अपने किसान भैया के लाने। और जो बहुत महत्वपूर्ण है कैसे कि जो जैविक खेती है वो अपने पर्यावरण के लाने भी बहुत लाभदायक है कि नहीं भैया। तो जो बात को अपने भैया ध्यान रखें कि अपन को कोनो समझाइश दी जा रही तो भाई अपन जरूर अमल में लिया।
2: दूसरी बात जो है हमारे रासायनिक खाद उर्वरक को खर्चा बिल्कुल कम हो जाते हैं और तीन साल में अपन कोई रासायनिक खाद उर्वरक नहीं देने हैं। पैदावार बिलात अच्छी होते हैं स्वास्थ्य के लाने भी लाभदायक रहते हैं भाव ही को वो बिलात अच्छा मिला थे।
3: बिल्कुल सही।
2: तो किसान भैया के लाने जो काम को जरूर करना चाहिए।
3: हाँ भैया। तो देखो जो तो भाई बात अपन खेती किसानी के बारे में और मुख्य रूप से जो प्राकृतिक खेती है या जो जैविक खेती है या जो अपन जो केंचुआ खाद उनके माध्यम से अपन करते हैं वो अपन जो प्राकृतिक खेती कहलाते हैं जाके बारे में अब हम सोच रहे हैं अपन क्रम की तरफ आगे बढ़े भैया। आज जो अनुक्रम है अपनों किसान बाणी गाँव में किसानों के साथ तो जा के अंतर्गत आज स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जो कार्यक्रम हम लेके आए हैं गांव को नाम है असुआखेड़ी विकासखंड शिवपुरी जिला शिवपुरी और जा में स्थल रिकॉर्डिंग असाइनी सहयोग है भैया मोहन सिंह यादव को और जाए प्रस्तुत करता है जाके श्री विनोद कुमार त्रिपाठी।
2: तो सुना था भैया अपन जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जी कार्यक्रम।
3: हाँ
4: किसान भैया देखो अपन भैया के लाने बिला तरह की जानकारी सुनवात रहे अपन गाँव में जाके।

0: इवन किसान के अनुभव लेते हैं जो खेती करते हैं, और भी कौन तरीका से खेती करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये सब के बारे में जानकारी अपन लेके और अपन आकाशवाणी गांव के माध्यम से संवाद।
1: सो किसान भैया, आज अपन आ गए हैं ग्राम असुआखेड़ी विकास खंड व जिला शिवपुरी है। तो इतने बिलात किसान भैया बैठे हैं, तो बिलात किसान भैया से अपन तनक देर से बताएंगे। इससे पहले सगे किसान भैया से कहते हैं राम राम
2: राम राम राम।
1: तो किसान भैया देखो, आप ये बीच में जो किसान भैया है, अपन इनसे जानते हैं खेती किसानी के बारे में। तो सबसे पहले अपन भैया को नाम जानते हैं, तो भैया अपन देखो सबसे पहले अपन नाम बताओ।
3: राजलूरी
1: है। आप जो उम्र है वो कितनी हो गई?
3: 42 साल।
1: खेती की जमीन की देख है?
3: हमने वही 10-12 बीघा जमीन में खेती करते हैं।
1: कितनी पढ़ाई लिखाई करी अपन ने?
3: इंटर के बाद हमने बंद कर दिया।
1: अच्छा, 12वीं पास जैसे अपन ने कर लाओ और अपने घर में खेती किसानी है थी, तो अपन ने जो है आगे पढ़वे की बजाय अपन ने खेती को रास्ता क्यों अपनाओ?
3: खेती किसानी में अपने मन लगा, सो खेती किसानी में लगी है। खेती तो मतलब पुरानी परंपरा से कुछ अपने नए तरीके से करती है, मतलब से दोनों मतलब अपने घर वालों के हिसाब से करती है। कुछ
1: पढ़े लिखे के हिसाब से भी अपन ने कुछ बदलाव करी हुई है ना खेती में?
3: नहीं, बदलाव क्या, बीज उपचार और वैसे खेती मिट्टी कुछ बदलते रहते हैं। मतलब जैसे कई मतलब जैसे जुताई है, कुछ बीज उपचार भी मतलब और तरीके से करती हैं, करती तो हैं।
1: तो अपने पास अगर अपन जमीन की बात करें, तो अपने पास खेती किसानी की जमीन कितने एक है?
3: जमीन की मेरे पास पास 5 बीघा।
1: तो 5 बीघा में अपन अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। तो जावेरे अपन ने जो है इसमें कौन सी फसल?
3: गेहूँ।
1: जुताई से लेकर और हमने वो कटाई नो अपन ने जामा जो है कैसे कैसे का काम करे?
3: क्या जैसे मूंगफली उखाड़ने के बाद खेत की तैयारी करते हैं, जुताई कर दी, और जुताई के बाद एहरान कर दी, एहरान के बाद एक बार जुताई कर दो, फिर सीडल से गेहूँ दो, और वैसे घास मास होती है तो इनके लाने घास के लाने देते ही।
1: सीडल से बोनी करवे को क्या फायदा है पहलाने?
3: खेती पैदावार सही रहती है, मतलब उसकी क्षमता है, मतलब पौधे की वो बराबर रहती है। मतलब जैसे अपन जैसे कोई बासी बहती है, मतलब छिड़कों से बीज गहरा चला जाता है, गहरा निकलने की क्षमता उसकी जमीन में खत्म हो जाती है, तो मतलब छोटी बड़ी वाले पैदावार कम हो जाती है उससे।
1: सीडल से बोनी कर रहे थे तो बीज की मात्रा अपन के देख लेते हैं?
3: सीडल से 20 किलो हो जाती 3 बीघा में,
1: और छिड़क वहाँ से ले तो कितने हो जाते हैं?
3: 25 किलो कर दो, बीवी बचता है और पैदावार भी बढ़ती है।
1: अब जैसे अपन ने वो नहीं कर रहा, उसके बाद फिर बात आउट है देखभाल की, तो देखभाल अपन कैसे का करते हैं?
3: दवाई छिड़कती है उसमें घास के लिए।
1: अपन ने जो गेहूँ की जो बोनी करी है वह कौन सी किस्म है?
3: लोकमान बहती है ज्यादातर।
1: लोकमान है ना, तो लोकमान में पानी अपने आने कितने लग जाते हैं?
3: 5-6 पानी लग जाती है।
1: थ्रेसिंग में भी पहले आने का सावधानी रखना चाहिए से, अपन कई बार सुनते हैं कि थ्रेसर पर काम करवे में जो है कई भैया इनकी दुर्घटना हो जाते हैं ना?
3: हाँ जी, थ्रेसिंग के समय यही है कि सब सावधानी रखनी चाहिए, कोई दारू मारू पी के ना जाओ उसके पास, मतलब ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मतलब सही कपड़ा पहनने चाहिए, टाइट कपड़ा।
1: तो राय जी, आपने जो है अपने किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं जो भैया के पास, तो अपन जो है इनसे जो है बकरी पालन के बारे में जाना थे कि जो बकरी पालन इनने जो है काय चुनो। तो सबसे पहले अपन भैया को नाम जाना, तो भैया अपना नाम बताओ।
4: महेश लोधी।
1: महेश जी, अपन जो है खेती कर रहे हैं और खेती के संग पशु पाल रहे, और पशुपालन में अभी अपन देख रहे हैं कि बिलात मात्रा अपन देख रहे हैं कि जो छेरी बकरियां बिलात देख रही हैं हमारे लाने, तो जब बताओ कि आप जो है खेती किसानी को छोड़ के गैया भैंस का पालन छोड़ के आप बकरी पालन में क्यों आए?
4: पहली बात तो ये है कि ज़्यादा खर्चा नहीं है, और ये उबड़ खाबड़ जमीन हमारे पास में बहुत सी है, चरा दें छोड़ दें तो सही तरीके की इनकी देखभाल हो जाती है, और संगे संगे जे अनाज है वो पड़ा हुआ है, छेरी बकरी उनके लाने डाल देते हैं तो वे ज़्यादा लाभ हो जाता है इनके लिए। और मतलब ये है कि भैंस के लाने तो बहुत ज़्यादा चराने लगता है, गैया के लाने बहुत ज़्यादा, बकरियों के लाने वो एक भैंस के चराने पड़ेगा, और बकरियों उसमें कम से कम 10 बकरियों इनके लाने हो जाएगा। हाँ, गरीब की गाय पालन ज़्यादा है
1: ना,
4: ज़्यादा है।
1: तो जो तो बात आपने बिला तो अच्छी कही कि बकरी हो जो है गरीब की गाय कहे थे ना। अब जब बताओ कि जैसे अपन ने जो बिला तो बकरी पाल रखी है, तो ये अपन ने जो रेवे की व्यवस्था होगी वो कैसे कर रहा है?
4: सर बढ़िया टीन सेट है, और वो के नीचे वो कच्ची जमीन है, और उसमें बस ढलान वाली जमीन है, जो मलमूत्र होता है वो बाहर निकल जाता है।
1: तो अपने पास जो बकरियां हैं वे रात में मलमूत्र करते हैं, तो इसके कारण कछु गंदगी भी रहते हैं, तो उनकी अपनी जो है साफ सफाई अपन कैसे का करत?
4: समय समय पर देखभाल करते हैं सर, वो 3-4 बार वो लगाते हैं, दिन मत तो चरने जाती हैं बाहर, शाम के टाइम आ जाती हैं, तो शाम के टाइम पर भी साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे तो रोग नहीं फैलता है। साफ सफाई भी चाहिए कि समय समय पर उनका मलमूत्र नहीं जमने दें, उसका शुद्ध पानी पिवाएं, अगर पानी है गंदा है तो बीमार हो जाएंगे। और जे जेठ मास में जे जैसे अब जे आ गया जे गर्मी का मौसम, अब जे ज़्यादा दिन में ध्यान देना है कौन खेतों में बालियाँ ज़्यादा आएँ और वे ज़्यादा मतलब खान पीन ज़्यादा हो जाए तो पेट फूल जाएगा, वो अफरा, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब
1: जैसे मान के चलो पशु के लाने अफरा होगा, तो अफरा के लाने फिर अपन के लाने वो लाने का खबा होता है?
4: मेडिकल से दवाई वगैरह।
1: अब जैसे अपन भीड़ बकरियाँ ने झुंड में रखा थे, मान के चलो अगर कोई अपनी बकरी बीमार हो गई तो वहाँ में जो है अपने जाके ऐसे पता पड़ा था कि जब अपनी बीमा बकर ये बीमा
4: वो क्या है कि या तो मौसलाट डाल रही है या वो अलादी सी है या बैठ जाती है, तो वो अपन वो रोज में चलती है वो नहीं चल पाती है, तो समझ जाते हैं कि इससे कुछ ना कुछ चक्कर है। हो गया वो चक्कर तो फिर बागला नहीं थे सावधानियाँ बरतना चाहिए कि वो सब बकरियों से हट के वह अलादी बांध देने चाहिए, हटा देने चाहिए, झुंड में रंग रखने चाहिए। इसलिए कि अपने बहुत जल्दी सावधानी बरतना चाहिए और वो बकरी के लिए अलादी बकरी हो भेड़ हो कछु भी पशु हो मतलब वो पशुओं से दूरी बना के रख
1: के लाने। अपन खावे पीवे की व्यवस्था कर रहा है अपन
4: खावे पीवे की जी एक सर जैसे हमारे पास में 25 बकरियां हैं तो 25 के लाने पाँच पाँच करके पाँच बेरो निकल ख्वाब पेवा देते हैं वो सवेरे हैं वो जवा डाल देते हैं गजर वगैरह बोलते हैं गजर है वो हरी घास है जैसे बरसिम वगैरह है वो डाल देते हैं बरी को टटुआ वगैरह है।
1: तो ब्यात के समय में अपन उनके लाने कौन कौन सावधानी रखते हैं
4: वो एक दिन आके लाए तो सर वो क्या है कि वो चना की वो दाल होती है वो ज़्यादा खिलाते हैं वो चाहे 85 ग्राम का खिलाएं कि वो हमारे पिताजी हैं वो बहुत शौक से खिलाते हैं।
1: कितने बच्चा दे देते हैं एक साल में
4: क्या बकरी सर वो चार बच्चे दे देती है दो वो छः छः महीना के अंतर से ब्याती है तो दो दो बच्चे होते हैं
1: जो है के महीना में बड़े हो जाते हैं
4: बेच भी लाख वही 8 महीना में 7 महीना में।
1: तो जैसे अपने पास कितनी बकरियां हैं अबे
4: अब 24 बकरियां
1: 24 बकरियां बच्चे कितने अबे बड़े तैयार होगा एक साल में कितने तैयार हो जाएंगे 24 में से
4: भाई 12 बकरा हो जाएंगे।
1: कितने कीमत अब लाने मिल जाए
4: कम से कम है अपने 6,000 के हिसाब से चले जाएगा बकरा
1: 72,000 कम से कम बेचे जाएंगे
4: जी।
1: बाकी बात आओ थे जैसे बकरी अपन पाली बकरी इनकी जो लेनी बचत है उनको उपयोग अपन का करा
4: उपयोग जो ये है गड्ढा है सर 5 फुट गहरा उसे वो गड्ढा में डालते हैं गड्ढा में डालते रहते हैं फिर कहा के महीना में यानी 30 दिन के अंतर से वो घंटा पानी ढीलते रहते हैं तो वो सड़ जाता है इसके बाद में वो एक साल में इकट्ठा हो जाता है जो डाल देते हैं खेतों में। खेत में सब इतनी महत्वपूर्ण खाद है वो कि इससे बेस्ट कौन खाद ही नहीं है दुनिया में जो बकरी का लेंडी होता है
1: पनेलू है एक साल में अगर माने तो 1,00,000 रुपया फायदा
4: हाँ 1,00,000 रुपए का फायदा है
1: और ये खाद अलग मिल जाता है। तो महेश जी आपने जो है भाई किसान भैया के लाने बकरी पालन के बारे में बिलात अच्छी जानकारी दी ये लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: किसान भैया देखो चले चला आ गए जब भैया खेत पे जाकर देख रहे हैं कि अपन ने जो है अमरूद भी लगा रखे हैं आम भी हैं और मौसमी के पेड़ भी इन्हें लगा रखे हैं तो अपन जो है भैया खेत पे चला तो अपन चलाते हैं भैया के पास और जानते हैं सबसे पहले भैया को नाम तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताओ।
6: अजब सिंह लोधी।
5: अजब सिंह जी अपन पढ़े लिखे हैं।
6: हाँ पढ़े लिखे जी।
5: अपन जो है खेती कर रहे हैं खेती अपने पास जमीन कितनी है।
6: जमीन है अपने पास 60 बीघा
5: और हम जो देख रहे हैं कि फलदार पेड़ लगे हैं तो खेती के संगे संगे फलदार पेड़ लगावे को विचार आपके मन में कैसे आओ जैसे का फायदा होता।
6: पहले तो अपने घर ही उपयोग करने के लिए लगाए और फिर अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई तो बेचन भी लगे नींबू वगैरह है जाम फल है घर अपन सब बच्चे हैं भैया हैं सबके लिए घर के लिए उपयोग हो जाते हैं।
5: तो अपन खेती कर रहे हैं और खेती के संगे अपने जो है फलदार जो पेड़ लगाओ अपन है तो उनको फायदा पहलाना का होते इनसे
6: फलदार एक तो घर है अपन जो बाजार से सब सब्जी है फल भी है लेकिन घर मूल ले आने पड़ते पैसों से और वो अब तब अपने घर ही यूज हो जाए तो अच्छे तरीके से अपन उसके लिए यूज कर सकते घर के काम में आ सकते बच्चों के लिए भी खिला पिला सकते अपन खुद भी खा पी सकते।
5: तो कहवे का मतलब जो है कि जैसे अपने जो है पैसा की बचत हो तो
6: बिल्कुल बिल्कुल जी
5: खेती अपन जो कर रहे हैं बात हो ही रही है संग में जी पहलाने अतिरिक्त आमदनी से मिल रही है
6: बिल्कुल सर।
5: तो आपने जो है अपने भैया इनके लाने बिलात अच्छी जानकारी दी कहलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन इनके पास चला थे और जाना था इनको नाम तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ।
7: रामनिवास लोधी।
5: रामनिवास जी अभी उम्र कितनी है।
7: हमारी सब 37-38।
5: अपने पास खेती की अगर अपन बात करें तो खेती की जमीन अपने पास कितनी है।
7: 10 बीघा सर।
5: आज से अगर अपन 25-30 साल पहले बात करें तो स्थिति कैसी है।
7: डाउन थी साहब पहले तो
5: का है तो का ना
7: पहले था। तो ऐसा था कि थोड़ा कोई ना ये बान वगैरह थे तो थोड़ी बहुत खेती कर ली मतलब रेंट वगैरह चलते थे उससे खेती मुझे कर ली थोड़ी बहुत और अब तो ऐसी कि जो वैज्ञानिक लोगों ने बांध चला दिए तो चाँजा भी खेती कर सकते हैं कहीं से कहीं पानी ले जा सकते हैं 2 किलोमीटर दूर तक पानी ले जाते हैं किसान लोग बांधों से।
5: तो गाँव में पहले आना जी बताओ पहले की खेती अच्छी है थी कि आपकी खेती अच्छी
7: है। आपकी खेती अच्छी है पहले तो साहब मतलब आदमी को पलने की समस्या खराब थी अब तो ऐसा है कि मतलब व्यापार कर रहे हैं खेती इसे बड़े बड़े किसान लोग बन रहे हैं मतलब जो जैसा कर रहा है मतलब सब फायदा उनके लाने।
5: गांव में जावे आवे की अपनी जो रास्ता है थे वे कैसे है थे।
7: रास्ता पहले तो सारे खुदे डरे थे ना कोई सीसी थी ना कोई डम्बर रोड थे अब ऐसी की सीसी हो गई दोबारा डम्बर रोड हो चुके अपने अपने घर घर मतलब।
5: वो पहले अगर अपन बात करें बिजली की तो जैसे अपन खेतों में पानी देते तो बिजली से देते
7: नहीं वो रेंट चलते थे बैल वाले।
5: तो बार रेंट से जो है कितने पानी अपन कितने जमीन में
7: दे था कि दस बीघा में दो बीघा में खेती हो पाई तो आठ बीघा तो पड़ी ही अपनी।
5: और आज का होगा भाई
7: ये मतलब वो दस बीघा डर सकती है और बानो से दस बीघा और डाल सकते हैं अपन
5: तो 20 बीघा अपन बो सकते हैं है ना। तो जहाँ दो बीघा हो पाते
7: हैं दो बीघा हो पाते
5: हैं तो मतलब कहा है कि विकास भाव
7: विकास तो हुआ है सर
5: है ना। अच्छा जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जो है आवास योजना चल रही है, इको लाभ पाए गांव में
7: है सब चल रहा है जी। कुटिले मुटिले चल रही प्रधानमंत्री वाली बेबी गाँव में चल रही मतलब
5: अभी गाँव में है लोग रह रहे तो जी को फायदा किसान लाने को मिल रहा नहीं मिल
7: जी सर।
5: और जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे है
7: वो बीमा जो अगर जी आ रहा है पटवाई वगैरह तो भी हो रहा है कुछ पता नहीं है किसान को तो वो नहीं आ पा रहे मतलब ना करवा पा रहे
5: तो जाको बीमा करावे से पहले का फायदा है।
7: फायदा जी साहब की अगर कोई फसल का नुकसान होता है तो अपने फायदा शासन देगी या ओले मोले कर जाए तो उसका भी कुछ अपने फायदा मिल सकता है जी। मतलब
5: क्योंकि मतलब जो है कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर हो रही है तो बाकी अपना भरपाई सरकार कर रही है
7: करेगी मतलब वो
5: तो पहले जो बीमा करा वो बोला जरूर
7: अनिवार्य है सर।
5: और अगर अपन बात करें खेती में जैसे आप बता रहे सरसों
7: जी
5: तो सरसों की खेती अपन ने करी तो सरसों में अपन ने जो है जो बताओ कि जुताई जुलाई कैसे करी।
7: जुताई जुलाई साहब यही है कि दो चार एक दो साल में जो प्लाऊ करवाते थे तो जिस साल प्लाऊ हो जाता है उस साल थोड़ी पैदावार अच्छी होती है उससे डेढ़ी पैदावार हो जाती है और अगर प्लाऊ मिला अपन दो चार साल लगा तो रुपये पैदावार होती है उसमें
5: प्लाऊ कराना चाहिए
7: जी भाई।
5: तो जैसे अपन ने सरसों करी तो सरसों में बीज अपाओ एक बीघा में कितने लगाओ।
7: एक बीघा में साहब हम तरफ तो वो ही बहते हैं डेढ़ किलो के आसपास एक सवा किलो डेढ़ किलो
5: और फिर आगे बाद अपन देखभाल अपन ने कैसे करूँ पानी आने के देख दे
7: पानी मानी जी सर क्या पानी की तो ऐसी है कि ऊपर वाली की मेहमान अगर अच्छा पानी हो गया तो दो पानी तीन पानी दे देते हैं और यदि कम पानी कम है तो कोई एक लग जाए दो लग जाए मुश्किल से। चार बीघा
5: में पहलाना जो है कितने लगभग एक बीघा में कितने खर्चा हुई है।
7: खर्च तो साहब उसमें जो ये कि वो चार बीघा में डेढ़ कट्टा डी ए पी का डाला था और एक कट्टा यूरिया का डाला था तो उसमें हमारी चार बीघा वही कड़ी 12 क्विंटल सरसों की लगभग कड़ी सर।
5: तो जुआ में पहला लगत कितनी लग गई।
7: लगत साहब उन्होंने वही लगत मगर जुताई मुताई जिलाई है वो हम दो घंटा जुताई जिलाई हो गई थी और डेढ़ कट्टा डीएपी गई यूरिया का डाला
5: मान लें अपन चार बीघा में 4000 खर्चा
7: और 4000 खर्च मान लो
5: 12 क्विंटल अपन ने कब भाव बेची
7: वो बेची साहब 52 रुपया किलो
5: 5200 तो भाई 12 क्विंटल के अच्छे हो गए नहीं 12×5=60-70,000 रुपये करीब हो गए
7: 70,000
5: और 10,000 की लागत लगी
7: 10,000 की लागत
5: 60,000 रुपये पहलाने फायदा भाव
7: जी।
5: तो कहने को मतलब जो है कि ऐसी फसल करना चाहिए जी में पहलाने फायदा है लागत कम और पैदावार तो ऐसी खेती होना चाहिए हर एक
7: जी।
5: तो भैया के लाना जो है अच्छी सरसों की खेती जो कर वो चाहते हो कहलाने आप क्या क्या वो चाहो तो कैसे तो कौन तरीका से कर सकता है
7: वो जो ही तरीका साहब की अच्छी खेत की पैदावारी मतलब अच्छी जुताई जलाई करना बढ़िया उसमें गूले खाद डाले उसको गलाएं बढ़िया सड़ाएं तरीके से और उसको डरवाएं वही जुताई जलाई करवाएं और फिर उसमें जो भी नियम अनुसार वो भी खाद दें सरकारी खाद भी मतलब वैज्ञानिक वाला जी।
5: और सरकारी खाद की जगह अपन मान के चलो बर्मी कंपोस्ट है क्या चुहाओ खाद है गोबर को खाद है जब भी अपन अगर छिड़काव कर दें जैसे खेत में नहीं डाल पाए तो ऊपर से अपन अगर छिड़काव कर दें तो बस भी तो पैदावार अच्छी
7: होगा सब क्यों नहीं होगा
5: रासायनिक खाद अच्छो का अपना देसी खाद
7: वैसे तो मेरे हिसाब से देसी खाद बढ़िया रहता
5: देसी खाद
7: देसी खाद बढ़िया
5: देसी खाद को किसान भाई इनका उपयोग करना चाहिए
7: जी।
5: तो आपने जो है किसान भैया ने कहलाने बिलात अच्छी जानकारी दी कहलाने बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैया देखो भाई बीच में जो किसान भैया और हैं सफल इनके पास चलाते हैं और जानते हैं इनको नाम तो किसान भैया देखो सबसे पहले अपना नाम बताओ।
8: जी मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राजपूत है।
5: अब उम्र कितनी होगी।
8: जी वही 26 साल की समथिंग
5: 26 साल की अभी उम्र है। और अगर अपन बात करें खेती किसानी की जमीन की तो अपने पास भूमि कितनी है।
8: भूमि वही 15 बीघा होगी।
5: 15 बीघा आपके पास जमीन है कि तो 15 बीघा जमीन में अपन जो है कौन कौन सी खेती अब उम्र होते है।
8: गेहूँ है सरसों है चना है।
5: और जाके संगे अपन जो है जैसे खेती तो अपन कर रहे हैं खेती के संगे अपन ने कहा फलदार पेड़ वगैरह कछु लगाए।
8: हाँ आम है जैसे महुआ है जामफल है और कटहल वगैरह है ये थोड़े थोड़े मात्रा में लगाए हुए हैं।
5: तो जो अपन ने जैसे आम लगो अपन देख रहे हो कटहल में भी देख रहे कटहल अपन आ रहे हैं हमें और उमें अगर अपन जैसे बात करें पे फायदे की तो जब फलदार पेड़ से पहलाने कितने फायदा हो जाए।
8: फलदार पेड़ से सब फायदा ये होता है कि कम से कम अपन लोगों को सब्जी वगैरह बाहर से नहीं खरीदना पड़ती है।
5: अच्छा सब्जी की पैदावार अपन कराते हैं।
8: हाँ।
5: फलदार पौधन के साथ सब्जी भी लगा होते हैं।
8: हाँ बिल्कुल जैसे कटहल के पेड़ हो गए और अगर वैसी सब्जी की बात करी जाए तो सब्जी भी लगाते हैं फसल के साथ साथ।
5: तो पशुपालन भी पाते हो।
8: बिल्कुल पशुपालन होता है जाके जो फसल से जो अतिरिक्त घास फूस मिल निकला थे वो अपने पशुपालन के लाने काम आते हैं।
5: तो पशुअन में अपन अगर बात करें तो कौन कौन से पशु अपने पास हैं।
8: गाय है भैंस है पशु है और अलग से अगर रोजगार है तो यह मुर्गी पालन है।
5: तो अपन जैसे खेती की बात कर रहे हैं कि खेती अपने पास हो रही है और खेती के संग पशु पाले हैं, तो खेती से पशुअन के लाने का फायदा है?
8: खेती से पशुअन के लाने जो फायदा, खेती को जो अवशेष रहता है जैसे भूसा है तो वो फालतू में वेस्ट नहीं होता, वो उसे खाके उच्च गुणवत्ता वाले खाद में एक तो पशु अपने खाद प्रदान करते हैं, ऊपर से अपने दूध घी वगैरह भी पशु देते रहते हैं।
5: तो जैसे आप काम चल जाते हैं और जैसे आप पैसा की बचत हो जाती। और किसान भैया आप जो है अपनी ग्राम असुआ खेड़ी से हो रही चरबे की बेरा, तो सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम। किसान भैया अपन सुन रहे थे किसान माणी गांव में किसान के साथ क्रम के अंतर्गत ग्राम असुआ खेड़ी विकासखंड व जिला शिवपुरी के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जी कार्यक्रम,
9: जाकि प्रस्तुत करता है श्री विनोद कुमार त्रिपाठी और असाइनी सहयोग तो भैया मोहन सिंह यादव को। और भैया देखो और का सुनवा भी चाह रहे हो आप?
5: भैया के लाने का जो मनोरंजन करा दो।
9: बिल्कुल भैया, तो फिर एक लोकगीत सुनवा दें?
5: हाँ
9: हाँ, तो भैया सुना था जो लोकगीत चाहे गाँव है राम सिंह राय ने, और अपन जो एक आजकल देख रहे हैं अपन पानी बहुत जरूरी है ना, तो यही बात को ध्यान में रखत भाई जो इन्हें कछु बात कही है, सुनाते हैं जो लोकगीत।

0: किसान भैया सुनो, अपन जो लोकगीत और अपन भैया के लाने बताओ थे कल के मौसम की जानकारी। तो कल दिन को न्यूनतम तापमान रहे वो 28 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहे वो 42 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रहेगी 15% और हवा की गति रहेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसान भैया अपने जो है ये बात को बिल्कुल ध्यान रखने, गर्मी से बचाव करने, और अपाई हो रही है चल किसान वाणी से चल भी की बेरा। तो अपाई मंगरू भैया और
1: जमनाबेन को देव आज्ञा,
0: राम
1: राम
0: राम,
1: राम
0: जय
1: जय
0: जवान
1: जवान
0: जय
1: जय
0: किसान।
1: किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम वैश्विक अनिश्चितता के दौर में राष्ट्रीय हित और आर्थिक संयम विषय पर चर्चा करेंगे। और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार सोनू, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
3: शरद जी, से पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम एक अंश सुनेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का, जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्थिर परिस्थितियों के दौर से हम काफी समय से गुजर रहे हैं और अभी ऐसा समय है जब जन भागीदारी के द्वारा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य निभाते हुए छोटे छोटे संकल्प लेकर ही हम इस स्थिति से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
5: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
3: क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि काफी समय से एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे हैं जिससे भारत ने बहुत मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया है। अभी जो स्थिति है, अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है, उससे किस तरह के स्पेसिफिक चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश के लिए?
4: देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, तो 87% के करीब भारत का क्रूड ऑयल विदेश से आता है और इन सब का भुगतान पेट्रोडॉलर्स, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि ये इसका क्रूड ऑयल का ज्यादातर जो व्यापार है वो पेट्रोडॉलर्स में किया जाता है। तो पेट्रोडॉलर्स की जब हम बात करते हैं सोनू, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार सीधा सीधा प्रभावित होता है। इस समय जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो $700 बिलियन से नीचे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या, उसके पीछे का आप अर्थशास्त्र जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ यही आकाशवाणी प्रसार भारती का दायित्व है जो इस समय पूरा आकाशवाणी निभा रहा है, कि लोगों के लिए इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे क्या अर्थशास्त्र था। अब वो जहां पे बोल रहे थे, पहले उन्होंने हैदराबाद से बोला, फिर वडोदरा से भी बोला, तो वो इस वक्तव्य में ये तो है नहीं कि पूरी पीछे वो इकोनॉमिक्स समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षरशः लेने का उसके पीछे अर्थशास्त्र समझना होगा। वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और ये जो खाड़ी में, वेस्ट एशिया में, कभी हाँ कभी ना, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, वहां पर शांति वार्ता सफल हो जाएगी, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, अगले दिन फिर लगता है कि नहीं होगा। शुक्रवार को ऐसा लगा कि ये मामला अब सुलट जाएगा, क्योंकि 14 सूत्री एक प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका के पास ईरान द्वारा, और जब पता लगा कि इसको अमेरिका ने ठुकरा दिया, तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो $100 से नीचे आ गई थी पिछले वीकेंड से पहले, वो एक दफे फिर सोमवार जैसी सुबह हुई, फिर वो 105 पॉइंट भी, तो ये ऐसा लगने लगा कि जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर ये चलता रहा तो जिस प्रकार से रुपए पर दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, तो उनको लगा कि भाई लोग अगर इसमें अपना योगदान दें, 140-145 करोड़ की जनता है, लोग इसमें अगर अपना योगदान देते हैं जी, तो इस समस्या का हम काफी हद तक समाधान पा सकते हैं। और इसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
3: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या ये छोटे छोटे उपाय सुझाए, छोटे छोटे संकल्प लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया, ताकि जैसे आपने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा, उसको कम से कम व्यय किया जाए।
5: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
3: बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने मिशन लाइफ सुझाया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें भी ये सब बातें थी। और वोकल फॉर लोकल जो सरकार का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है, उसके तहत अगर हम देखें तो उन्होंने जो कहा है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में वेडिंग्स करिए, ये बात भी वो पहले कर चुके हैं। लेकिन अब उन बातों का जो एक कहें कि महत्व था, वो बहुत बड़े वे में अभी सामने आ रहा है स्थिति में।
4: जी हाँ, प्रधानमंत्री जी तो देखिए शुरू से ही स्वदेशी के ऊपर जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, और छोटी छोटी बातों में कहते हैं। पर इस बार उसमें एक और आयाम सोनू जुड़ा
3: जी।
4: वो आयाम था विदेशी मुद्रा भंडार का। आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा, इन सभी चीजों में जो आपको कॉमन थ्रेड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार को सेव करना था, जहां जहां हम बचत कर सकते हैं, जो गैर जरूरी चीज है। और अगर मैं सोनू आपकी इजाजत से टॉप तीन आइटम जो हम इम्पोर्ट करते हैं, मुझे लगता है आकाशवाणी के श्रोताओं को ये जानकर बहुत बड़ी उनकी जानकारी में इजाफा होगा कि सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन का हमने वित्त वर्ष 25-26 में आयात किया, लगभग $140 बिलियन का। दूसरे नंबर का क्या था, आपको हैरानी होगी सुन के, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स थे। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे कलपुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, लगभग 115 से $120 बिलियन का। ये दूसरे नंबर का आइटम था। और हैरानी की बात है कि तीसरा आइटम सोना था, जो कि $72 बिलियन पिछले साल 25-26 में हमारे यहाँ, इससे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था, लगातार इसका आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल जिसको हम कहते हैं, आयात का जो पूरा खर्च है
3: जी,
4: उसके बढ़ते हुए क्वांटम को देख के, उसके बढ़ती हुई संख्या को देख के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो अगर लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो तभी ये बचत हो सकती है। क्योंकि ये किस लिए आता है, लोगों के इस्तेमाल के लिए सब चीजें आती है, क्रूड ऑयल आता है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, चलिए ठीक है वो बी टू बी होता है, कुछ लोग मोबाइल फोन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोना तो ऐसी चीज है जो कि 60-70% सोना जो हम आयात कर रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाहूंगा सोनू के 99% सोना भारत का आयात किया जाता है, तो उसमें 60-70% तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, बाकी का निवेश में जाता है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना लोग गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के बिना हम गुजारा नहीं कर सकते। हम शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम मंगाते हैं क्योंकि हमारा उस पर निर्यात भी निर्भर है, उससे विदेशी मुद्रा आती भी है, परंतु सोना तो ऐसी चीज है। तभी उन्होंने सोने के लिए अलग से कहा, जो उन्होंने एक साल की बात कही कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदे। और मैं देखिए ये कहना चाहूंगा क्योंकि सोना भारत में भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, सोना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप सोने को रिसाइकल करिए ना। एक अनऑफिशियल एस्टिमेट आया कि भारत में 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है, तो जो आपके पास पुराने फैशन के हार पड़े हैं, कंगन पड़े हैं, चेन पड़ी है, अंगूठी पड़ी है, और अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, शादी ब्याह का मौका है, फंक्शन है, कहीं देना चाहते हैं, तो उस सोने को आप लाइए टेबल पे। एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने अभी किसी फेमस क्रिकेटर को हायर किया सिर्फ यही कहने के लिए कि आप पुराना सोना अपना लाइए और बनवाइए, क्योंकि नया आप सोना के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदना भी महंगा पड़ता है, लोग पीछे शिकायत भी कर रहे थे कि सोना हमारी पहुंच से बाहर हो गया, तो उसको रिसाइकिल किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल, कल कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सा गलत परसीव किया कि क्या सोना पहनना छोड़ दें, सोने का इस्तेमाल, सोना खरीदने को मना किया उन्होंने, सोना पहनने को या सोना रिसाइकल करने को उन्हें मना नहीं किया।
3: बिल्कुल शरद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अभी 70 दिनों से अधिक हो गए हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए, और हमने देखा है कि बाकी जो विकासशील देश है और विकसित देश है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, कहीं 50%, कहीं उससे भी ज्यादा, बहुत अवेलेबिलिटी पर भी असर हुआ है। भारत ने अभी तक जिस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील किया है, आप कैसे तुलना करेंगे? और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये देखते हुए कि शायद ये क्राइसिस लंबा चल सकता है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको लगता है जो सरकार ने ये अपील की है, ये एक इंक्लूसिव अपील है सबको साथ में लेते हुए, और बहुत दूरदर्शिता से भरी हुई एक स्टेप है?
4: बिल्कुल, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका को स्वयं देखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा तेल का वहां पर उत्पादन होता है, उनके स्वयं अपने देश में कीमतें डबल हो चुकी है। वहां पर इसको गैस बोला जाता है, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैसोलीन बोलते हैं। हम लीटर में नापते हैं, वो लोग उसको गैलन में नापते हैं। भारत सरकार ने, मुझे लगता है भारत की जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही, उस दम पर भारत इसको झेल पाया। परंतु प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसका दबाव भारत सरकार पर, भारत के कोष पर पड़ रहा है। हम और आप जाके पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाते हैं या हम एक नॉर्मल गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही नजर आता है सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु इसके पीछे, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे जो अर्थशास्त्र है कि इस पे जो फिस्कल लोड, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारे ऊपर राजकोषीय भार पड़ रहा है, वो भार धीरे धीरे धीरे धीरे करके कठिन होता जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह, सोनू, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, इनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कब तक ये लॉस झेल पाएंगे? आखिर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रही तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। और इससे पहले कि ये निर्णय लेना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने एक घर के बड़े के नाते, देश के नेता होने के नाते, उन्होंने लोगों को एक सुझाव कहिए, अपील कहिए, उसको दरख्वास्त कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लोगों को करिए कि अगर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हर व्यक्ति योगदान देगा, अगर सरकार कह सकती है सबका साथ सबका विश्वास, तो आई थिंक लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी। और मैं तो ऐसा मानता हूं, सोनू, के युद्ध की जब परिस्थिति होती है ना, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से सिपाही बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे हम लोग गन उठाए तो नहीं, युद्ध के मोर्चे पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, ना हमारा देश लड़ रहा है, पर हम इस तरीके से देश में एक आर्थिक युद्ध जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसा लगता है थोपा गया है, उससे हमें हर व्यक्ति अपना अपना योगदान एक सिपाही बन के दे सकता है।
3: और इसमें अगर सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है, जैसे बाकी सब देशों ने उठाया है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, वित्तीय जो हमारी स्वास्थ्य है हमारे देश का, उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसको भी, जैसा आपने समझाया, एक अर्थशास्त्री के तौर पर उसे गहराई से समझना चाहिए।
4: बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए, जो अर्थशास्त्र है, मुझे लगता है उसमें ना कोई राजनीति है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर देश के ऊपर भार पड़ रहा है तो लोगों पर भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है तो देश पर लाभ पड़ रहा है, इन लोगों को मिला के ही देश बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर कल को ये कठिन निर्णय लेना भी पड़ता है तो लोग अब इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ आवाजें तो देखिए सोनू हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको कि कोई भी निर्णय पसंद नहीं आता, अच्छा निर्णय भी पसंद नहीं आता, तो ये बड़ा नहीं कि तो मैं बात अलग है।
3: इनफैक्ट अब आवाजों की बात कर रहे हैं शरद जी, तो IMF की प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनको ये लगता है कि सरकार को, भारतीय सरकार को, अब एक स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए, यू नो, लॉन्ग रन में ठीक हितकारी नहीं होगा।
4: क्योंकि IMF में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, और जब वो गणना करते हैं, जब वो आकलन करते हैं, तो उनको दिखाई दे, मैंने तो आपको स्वयं ही कहा कि अगर जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को समझता है वो व्यक्ति तो तुरंत कहेगा, बल्कि वो हैरान होगा कि अभी तक भारत सरकार ने कैसे इसको बर्दाश्त कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर उनके आप पूरा वक्तव्य जब सुनेंगे हम, तो उन्होंने कहा कि इससे देश पर दबाव पड़ रहा है, और उन्होंने कहा कि देश इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है लोगों के लिए ये संकेत काफी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी आके लोगों को डराएंगे तो नहीं कि हम, अब प्रधानमंत्री जी आके आंकड़े देने लगे कि इतने दिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चलेगा, कल को फिर हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार की वो कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जब कोई चीज पीछे से महंगी आ रही है और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, मात्र 13% क्रूड हमारे देश में होता है, 87% हम बाहर से मंगाते हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार तो ज्यादातर डॉलर में काम होता है, कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो खाली डॉलर से नहीं बनते हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक के पास सोना है वो भी होता है 880 टन के आसपास, और इसमें IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है, इसको SDR बोला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे इसी प्रकार इरोड होता रहा, ये धीरे धीरे जाता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें, आपको याद होगा 1990-91 में भारत को एक समय ऐसा था जब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो उस ओर अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश चल पड़ा है, तो इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए, और लोगों को इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, और लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे 5 लीटर तेल कम भरवाने से क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा? जी हाँ, बच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो 140 करोड़ की हमारी आबादी तो कमाल करके दिखा सकती है। सोनू,
3: शरद जी, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक संयम और हरेक नागरिक का योगदान कितना आवश्यक है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद, थैंक यू।
3: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला नगमा किशोर कुमार का गाया हुआ है। साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है दाग।

कुदरत। जी हाँ, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, आर डी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई है और आवाज़ परवीन सुल्ताना की।

कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया आपकी कसम फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आपकी कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। NEET UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जाँच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को NEET UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित TV के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TV के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान TV के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government. Floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the second round of Thailand Open in Bangkok. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated the special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency, NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Earlier, as per the sources, the Rajasthan Police SOG arrested 5 persons from Dehradun, including the alleged mastermind, Seeker-based career counselor Rakesh Kumar, on 7th May. 4 NEET aspirants were also arrested the following day. Nashik police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, those who are involved in the alleged NEET UG paper leak incident will be nabbed and jailed. He said, the NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam.
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है.
2: We have handed over this matter to the Central Bureau of Investigation for inquiry and all those involved in such wrongdoing will be sent to jail so that students' future are not adversely affected in any way. Along with this, we will conduct the examination again in a completely fair manner with no irregularities of any kind and no additional fee will be charged for the re-examination.
1: Fees नहीं चार्ज करेंगे.
0: The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munaitra Kadagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. The government has also secured the backing of the lone MLA of Amma Makkal Munetra Kadagam, S. Kamaraj, who was expelled from his party today. Chief Minister Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties since yesterday to consolidate support ahead of the floor test. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
3: Moi, Sri Himanta Biswa Sarma, Ishwarar namat shapat lao je bidhir dwara stapito Bharatar sangbidhanar proti moi prokrito biswas aru anugotya pokhon korim.
0: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Nyog from the BJP, Atul Bora from Aham Gana Parishad, and Charan Bora from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The committee has been tasked with submitting its detailed findings and funding requirements to Sanjeev Sanyal, a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, by 31st August this year. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download News on AIR app. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing the media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
4: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
0: Replying to a question on reports regarding China's support to Pakistan during Operation Sindoor, Mr. Jaiswal said that these reports corroborate what was known earlier. He said that Operation Sindoor was a precise, targeted and calibrated response to the terrorist attacks in Pahalgam.
4: Operation Sindoor was a precise, targeted and measured response to the terrorist attack that took place in Pahalgam. Its objective was to destroy those terrorist infrastructures that are not only sponsored by the Pakistani state but also operate from Pakistan and under its directions. Now, it is for those nations that consider themselves responsible to introspect and reflect on whether supporting efforts to protect terrorist infrastructure affects their reputation and global credibility.
0: Speaking about India's relations with Nepal, Mr. Jaiswal said both sides are now working closely to further deepen the partnership. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the Indian economy has continued to show resilience amid global geopolitical and economic challenges with strong fundamentals and growing global confidence in India. Speaking at the CII Annual Business Summit 2026 in New Delhi today, he said India is capable of strengthening itself against all obstacles, be they economic, technological or geopolitical. He mentioned that the world is facing crises every day due to fragmented geopolitical and business conditions, but India has consistently converted adversity into opportunity.
5: We can overcome any international global challenge with great resilience. The world is going through a challenging time. The war in West Asia has certainly disrupted global trade and global investment flows. And in these trying times, India has a great opportunity to outshine others.
0: Addressing the summit, Niti Aayog member Rajiv Gauba said that in order to establish the structural foundation for India's future economy, the government has enhanced connectivity via PM Gati Shakti, broadened highways and developed the Vande Bharat rail network. Education Minister Dharmendra Pradhan, who also spoke at the summit, stressed the need for a skill-based education system. He said that in this regard, a strong credit system must be developed under the National Education Policy. Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that India has recorded the world's fastest growth in renewable energy capacity addition in a single year. Speaking at the CII Annual Business Summit, he highlighted the country's progress in the energy sector. Mr. Joshi said that India remains in a strong position despite the current global uncertainties.
6: According to the International Energy Agency, India has recorded the fastest growth of the RE capacity addition in a single year. Non-fossil fuel, including hydro, it was 81 gigawatt. Today it is 288 gigawatt, 256% growth.
0: Union Home Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is working tirelessly towards building a cyber-secure Bharat. However, he emphasized that mule accounts remain a major challenge in curbing cyber crimes. The Indian Cyber Crime Coordination Center today signed an MOU with Reserve Bank Innovation Hub to strengthen collaboration in combating cyber-enabled financial frauds and curtailing mule accounts across the banking and digital payments ecosystem. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district this afternoon. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and Sangli Civil Hospital for treatment. Benchmark domestic equity indices slumped around 2% amid weak global cues as elevated oil prices and U.S.-Iran tensions clouded the market's confidence. We have a report.
7: The Sensex plunged 1,456 points, or 1.92%, to close at 74,559. The Nifty shed 436 points, or 1.83%, to settle at 23,380. The broader market on the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 slipped over 2.5%, while the small-cap 100 tumbled nearly 3.2%. Earlier, the markets opened lower and continued to witness persistent selling pressure throughout the trading session. In the forex market today, the rupee depreciated by 32 paise to close at a record low of 95 rupees and 63 paise against the US dollar. Rajesh Lake for Akashwani News.
0: The government has revised the release date of the provisional estimates of annual gross domestic product GDP and quarterly estimates of GDP for fourth quarter from the last working day of May to 7th June every year. The Ministry of Statistics and Program Implementation said that the provisional estimates will be released on the previous working day if 7th June is a holiday. The revision in the release schedule has been made after due consultation with the Advisory Committee on National Account Statistics. The ministry said that the revision is aimed at further strengthening the data quality. The External Affairs Ministry today said that the registrations for Kailash Mansarovar Yatra 2026 are closing soon. In a social media post, the ministry encouraged the interested candidates to apply for the Yatra before the 19th of this month. Candidates can visit kmy.gov.in for further details. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heatwave conditions over Rajasthan for tomorrow. Similar conditions are likely to prevail over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has also forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for tomorrow. In badminton, Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty began their Thailand Open 2026 tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seeds Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Arviansyah and Bagas Maulana 21-19, 23-21, 21-10 to enter the men's doubles second round. In IPL cricket, Gujarat Titans were 158 for 4 in 19 overs against Sunrisers Hyderabad at Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Sunrisers Hyderabad won the toss and opted to bowl. And now before we end the bulletin, the headlines once again. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में एआईए डीएमके में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की टीवीके हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है। कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट यूजी इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीकेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
8: इससे कबल आज दिन में एनटीए ने इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद किए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहान को मंसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों से मुतालिक ग्रुप एसओजी ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसओजी ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस एसओजी ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिबे इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलसल दूसरी मुद्दते कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
3: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
8: डॉक्टर शर्मा के हमराह कानून साज असेंबली के 4 अरकान ने भी काबीनी वुजरा की हैसियत से हलफ लिया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजनता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुख्तलिफ मरकजी वुजरा और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں نو منتخب شدہ ٹی وی گے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں دو گروپوں میں بچ گئی ہے. سابق وزیر اعلی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں. سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا. ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے. گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی. شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا. حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا. وزیر اعلی وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے. عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی. عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے. کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے. سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے. تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزرائے خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے. آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے.
9: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں. جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے, لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں, کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں.
8: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی. جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے, سویڈن, اٹلی اور نیدرلینڈس کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا.
9: سنجکت عرب امارات دورے کے دوران بھی ارجا سرکشا پر بات چیت ہوگی, جس پرکار کا ہماری ان سے سازداری چل رہی ہے کیسے اس کو اور ویاپک کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ارجا سرکشا ہماری ہے اس کو ہم مضبوط کر سکیں. اس کے علاوہ جو 4 انیہ دیش ہیں, نارڈک سمٹ ہونے والا ہے, ناروے کی یاترا ہے, سویڈن کی یاترا ہے, اٹلی کی یاترا ہے, نیدرلینڈس کی یاترا ہے, یہاں پر بھی یہ دیش میں کہ نواچار کے بہت بڑا کیندر ہیں. انوویشن ایکو سسٹم میں بھارت میں بہت کام ہو رہا ہے اور کلین انرجی ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ اور گرین ٹرانزیشن میں کافی آگے ہیں. تو ان سبھی مدعے پر ہماری بات چیت ہوگی اور وہ سب سازداری جو وکست بھارت کی طرف ہم کو لے آتا ہے اسے کیسے مضبوط کیا جائے گا.
8: آپریشن سندور کے دوران چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کیے جانے سے متعلق خبروں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ایک مخصوص, مقرر اور تالمیل سے کی گئی کارروائی تھی, جس کا مقصد پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور اس میں مدد فراہم کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا تھا.
9: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
8: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मवाक़े में तब्दील करता रहा है। भारतीय इक्तसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मुश्तरका तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि एनसीईआरटी नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मसनूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2-3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खत्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और एक डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रुपये हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गोंटिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
10: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकश।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हंसते जख्म फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए, अब सुनिए पंडित दिनकर कैकिनी का राग सावनी बिहाग में ख्याल गायन। तबले पर संगत की है यदुनंदन गोस्वामी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिनी का राग सावनी बिहाग में ख्याल गायन। तबले पर संगत की थी यदुनंदन गोस्वामी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह

0: प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France from 14th to 16th of June next year under the India-France Year of Innovation. The interaction brought together ambassadors, high commissioners, diplomats and government officials to discuss opportunities for global collaboration through India's growing innovation ecosystem. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In Maharashtra, six devotees were killed and around 15 others injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district this afternoon. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and Sangli Civil Hospital for treatment. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for practical implementation of Prime Minister Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchase of gold. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight. Chasing a target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11:10:05 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।